0: All right, recent big breaking news coming in at this hour. We're understanding that the White House says the plans for technical talks are not yet finalized. An important update coming in from Washington as we're learning that the delegation is ready.
1: Welcome back. 60 years after Balasaheb Thackeray founded the Shiv Sena, the party's anniversary is being overshadowed by yet another revolt. Six of Shiv Sena UPT's nine Lok Sabha MPs skipped a crucial parliamentary party meeting in Delhi, fueling speculation that a breakaway group may be in the works. Sources indicate these MPs could seek recognition as a separate parliamentary faction, with Parbani MP Sanjay Jadhav emerging as a possible leader. And you know, adding another layer to this story, NDTV has learned that some of the MPs were together at a Rajasthan resort before arriving in Delhi, while six have been now provided Y-plus security cover. The Sena UPT leadership has already approached the Lok Sabha Speaker Om Birla, as we have been reporting, urging him not to recognize any breakaway formation. And Sanjay Rawat has gone a step further, by the way, arguing that there is no constitutional provision today for recognizing a simple split, and warning the rebels could still face disqualification proceedings. Here are the crucial political reactions you need to listen to.
2: नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे देश में लाके खड़ी करी है और निष्ठा तो इतनी लेवल पे गई है कि अब वो पूरे देश में अपोजिशन ही खत्म करना चाहते हैं, जिसको मैंने बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी आरएसएस को डेमोक्रेसी एक्सेप्ट नहीं है और उसी के परिणाम अब पूरे देश की जनता देख रही है। लोकतंत्र की रोज हत्या ये लोग कर रहे हैं।
3: दिशा अगर अलग हो रही है वो लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे। अब तक ये लोग सामने नहीं आए, मुझे मालूम नहीं कहाँ छुप गए हैं। इतने डरपोक लोग हैं जो खुद को शिवसैनिक समझते थे। शिवसैनिक डरपोक नहीं होता इतना, ये आपने आपको शिवसैनिक समझते हैं और कहाँ जाकर छुप गए हैं, जयपुर में। ठीक है, अब व्हिप का उल्लंघन किया है उसका मतलब है पार्टी का आदेश तोड़ा है, अब उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी और ये सभी जो सांसद है वो डिसक्वालीफाई हो गए।
4: हाउस में अगर पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे, पार्टी के व्हिप के खिलाफ मतदान करेंगे, मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे, तब ये सब लागू होता है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और ये आज जो व्हिप लगाए हैं, आज मीटिंग लगाए, उससे पहले ही अगर उन्होंने नया गठ बनाया होगा वही बता सकते हैं, तो उनका व्हिप कौन पूछने वाला है? क्या भी कैसा उनकी सांसद रद्द कर सकते हैं? देखो, ये धमकाने की बातें कर रहे हैं, वो खासदार है, वो ऐसे चुन के नहीं आए, पिछले दास से अपक्ष करके आमदार चुन के आए।
5: मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर बालासाहेब ठाकरे जिनके नेतृत्व में शिवसेना बनी आगे बढ़ी, अगर उद्धव ठाकरे जी और उनके पुत्र परिवार से उनके पार्टी के सांसद विधायक नाराज थे और उन्होंने एक अलग खेमा बनाकर शिवसेना उसमें चलाई, इसमें भाजपा का कहाँ रोल आता है? तृणमूल कांग्रेस के अंदर अत्याचार ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के कारण उनके सांसद त्रस्त हो, इसमें हमारा कहाँ लेना देना? बंगाल की जनता ने मुक्ति दिलाई टीएमसी से, जो टेरर मर्डर कटमनी के रूप में टीएमसी जानी जाती थी, उससे मुक्ति मिली, तो उनके सांसदों ने मुक्ति ले ली दीदी और भाईपो से।
1: All right, as Parliament prepares for the monsoon session, the political focus is shifting sharply to numbers and the race for a two-thirds majority. With fresh splits and rebellion across parties from Bengal to Maharashtra, the NDA is now looking at whether these shifts can push it closer to that crucial 360 mark, which translates into two-third majority. At the centre of this political arithmetic is the Shiv Sena UPT rebellion, which, if sealed, say it can directly strengthen NDA's position in Parliament. And this will be crucial for government's key legislative agendas, including delimitation, the Women's Reservation Bill, and also electoral reforms. On that note, let's also get you the latest update from Jharkhand, where in a major upset for the Congress, the NDA-backed independent candidate Parimal Nathwani beat Congress's Pranav Jha to clinch the second Rajya Sabha seat in the state up for polls. While 28 seats were needed to win a place in the upper house, JMM's Baidyanath Ram got 30 votes, followed by Parimal Nathwani, with 30 of which 28 were held valid. Pranav Jha of Congress only managed 20 votes. While the Congress on paper had the numbers with ally CPIML with 2 seats and RJD with 4 seats in the mix, suspected cross-voting has resulted in the shocker win of Parimal Nathwani. And numbers suggest that the RJD MLAs seem to have cross-voted, with CPIML denying any sort of cross-voting. 2 votes were deemed invalid during this election, with Parimal Nathwani hitting that magic number. While thanking the workers of the BJP, Mr. Nathwani pledged to continue to work for Jharkhand. He also, of course, thanked the Prime Minister and Amit Shah for this opportunity.
6: आज राज्यसभा में जो मुझे नॉमिनेशन मेरा एक्सेप्ट हुआ, मैं तहे दिल से झारखंड के सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खास तौर पे हमारे जो विधानसभा के जो एमएलए थे, जो भाजपा ने मुझे अपना नॉमिनेशन करने का मौका दिया और एज ए इंडिपेंडेंट मुझे चुनाव करने के लिए जो हेल्प किया, उसके लिए मैं सबसे तहे से मैं हमारे देश के वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित भाई, हमारे बीजेपी के सारे यहाँ के सभी लोगों को और राष्ट्रीय नवीन जी का सबका मैं आभार मानता हूँ।
7: सारे देश का जो माहौल है उससे झारखंड अलग तो नहीं हो सकता है। हम लोग देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और राज्यों में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हमले हो रहे हैं। तो इस तमाम कोशिश जारी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इस बात को समझ रही है कि सबसे बड़ा रुपया, तो जहां रुपया की बात होगी तो वहां तो जो लोकतंत्र का जो उसके जो मूल्य हैं उसको बचाना मुश्किल है।
8: बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दूंगी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी धन्यवाद दूंगी कि हमारे जमीनी नेता को उन्होंने राज्यसभा भेजा है। इससे हमें पार्टी में काफ़ी खुशी है। और लेकिन एक दुख इस बात का भी है कि हमारे गठबंधन के 2 प्रत्याशियों की जीत होनी चाहिए थी, आंकड़े थे, लेकिन नहीं हो पाया, हमारे प्रत्याशी जीते। तो इसमें हालांकि हमारी पार्टी के हर विधायक ने अपने प्रत्याशियों को वोट किया है, यहाँ से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, ये प्रमाणित है एक तरह से। और कांग्रेस भी इसे जानती है कि हमारे जो विधायक थे उन्होंने वोट किया है। अब कहाँ रीच हुआ, कैसे हुआ, ये तो जाँच का विषय है।
1: Well, let's move on to the other big stories we're tracking on NDTV. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath is set to visit Ayodhya today amid an ongoing probe by a 3-member special investigation team into allegations of fund misappropriation linked to the Ram Temple. The Chief Minister is scheduled to offer prayers at the temple later this afternoon. Meanwhile, the SIT investigation continues to widen, with 11 people questioned so far. Those examined include a former driver associated with the Temple Trust General Secretary Champat Rai, as well as the individual who headed the team responsible for counting donations. And investigators are also looking into the handling and deposit of temple funds. All right, let's turn our attention to breaking news coming in this morning. A private bus travelling from Bhubaneswar to Chennai caught fire on the National Highway in Annakapalli district. While the fire crew successfully extinguished the blaze, we are given to understand this vehicle is completely

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: ये आज जो व्हिप लगाए हैं, आज मीटिंग लगाए, उससे पहले ही अगर उन्होंने नया गठ बनाया होगा वही बता सकते हैं, तो उनका व्हिप कौन पूछने वाला है? क्या व्हिप, कैसा उनकी सांसद रद्द कर सकते हैं? देखो ये धमकाने की बातें कर रहे हैं, वो खासदार है, वो ऐसे चुन के नहीं आए, पिछले दार से अपक्ष करके आमदार चुन के आए।
1: मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर बाला साहब ठाकरे जिनके नेतृत्व में शिवसेना बनी आगे बढ़ी, अगर उद्धव ठाकरे जी और उनके पुत्र परिवार से उनके पार्टी के सांसद विधायक नाराज थे और उन्होंने एक अलग खेमा बनाकर शिवसेना उसमें चलाई, इसमें भाजपा का कहाँ रोल आता है? तृणमूल कांग्रेस के अंदर अत्याचार ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के कारण उनके सांसद त्रस्त हो, इसमें हमारा कहाँ लेना देना? बंगाल की जनता ने मुक्ति दिलाई टीएमसी से, जो टेरर मर्डर कटमनी के रूप में टीएमसी जानी जाती थी, उससे मुक्ति मिली, तो उनके सांसदों ने मुक्ति ले ली दीदी और भाईपो से।
2: आज के ये जो कार्यकर्ता या नेता जो एमपीज है ना, मैक्सिमम जो है ना, ये जो है आइडियोलॉजी पे नहीं बल्कि लोभी हो गए हैं, लालची हो गए हैं, डरपोक हो गए हैं, या तो पैसे की लालच या तो डर। मेरा कहना है कि एक ऐसा ये इंसाफ तो ये होगा कि वोट अगर मैंने किसी को दिया है ये समझ के कि ये पार्टी की आइडियोलॉजी मेरे लिए अच्छी है, और वो आदमी मुझसे वोट ले करके एमपी बन जाए और फिर अपनी मर्जी से वो पार्टी छोड़ के चला जाए, मैं समझता हूँ ये चीटिंग है। और चुन के आने के बाद वो आदमी अपनी मर्जी से पार्टी बदल दे, मैं समझता हूँ उसको डिसक्वालीफाई उसी दिन हो जाना चाहिए जिस दिन वो अपनी पार्टी जो पार्टी बदल पाए।
3: जो आने वाले थे वो आगे उनका सम्मान रहेगा शिवसेना में, और टाइगर ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र राज्य के जो उपमुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, उनका नेतृत्व जो है वो सर्वमान्य है और उनके बारे में बहुत अट्रैक्शन है बाकी के लोगों को, तो सब हमारे पास आ रहे हैं।
4: The split may not be official yet, but the numbers tell their own story. Tempers are flaring, accusations of betrayal are flying thick and fast within the Shiv Sena UBT. In a remarkable coincidence, four leaders named Sanjay have emerged as central figures in the latest crisis engulfing Shiv Sena UBT. NDTV's managing editor Padmaja Joshi decodes the tale of four Sanjays of the UBT. Take a look.
5: Very curious coincidence that has emerged in this entire case, the case of the four Sanjays. Now, believe it or not, you've got multiple Sanjays. And you remember in Mahabharat, Sanjay was the sutradhar. He always knew what is happening. He pretty much held the narration, the narrative of the entire Mahabharat together. Dhritaraj ko wahi batate the Sanjay ki chal kya raha hai, ranbhumi mein kya chal raha hai. In this case, you have got three rebels. You've got Sanjay Jadhav, who is from Parbhani. Sanjay Deshmukh, the MP from Yavatmal. And then you have Sanjay Deena Patil, the Mumbai Northeast MP. Let's talk about Sanjay Deena Patil. He, by the way, had been telling people all through yesterday, I'm going to be in today's meeting of the parliamentary party. At the last minute, he didn't turn up. When reporters are calling him up, some of them he's saying, I am there at my daughter's birthday. Then some reporters he told, I'm at my granddaughter's birthday. Ultimately, whose birthday he was at, he's definitely not inside parliament. He also comes from a very strong political family in Mumbai and has been a two-time MP. His father, Deema Patil, was also a formal MLA and a respected trade union leader. Then let's talk about Sanjay Jadhav from Parbhani. Big face of the Shiv Sena in Marathwada and was considered a very trusted aide of Uddhav Thackeray himself, was part of the Shiv Sena Sangathan and is a three-time MP from Parbhani. Lately though, people spoke of how he seemed a little disillusioned and had not been attending meetings in Matoshri. And finally, Sanjay Deshmukh, who comes from Yavatmal, was a big player in Vidarbh, was an independent MLA from 1999 to 2009. And then between 2002 and 2004, he was the sports minister in Maharashtra. But there is one Sanjay who is above all of them and has been in the headlines throughout in this entire episode, and that is Sanjay Raut. So it's been a tale of four Sanjays in this entire story of defection.
4: And NDTV's political editor Vasudha Venugopal spoke exclusively to Shiv Sena MP Milind Deora on the rebellion accusations and what lies ahead for Sena. Milind Deora says UBT functions like a monarchy. Listen in to what he said about the political turmoil unfolding in the state.
6: Six UBT MPs staying away from a crucial party meeting despite a whip is no ordinary development. What is your reading of what's unfolding within Uddhav Thackeray's party?
7: Well, hi, good evening, Vasudha. Thank you for having me. What's very, very clear is that people from MPs to ordinary volunteers and karyakartas have lost faith in UBT, its leadership. This obviously began many years ago, but I think it's peaking at the moment. And, you know, the fact that 6 out of 9 MPs, 2/3 of a party's Lok Sabha MPs, its strength in the Lok Sabha, decide not to attend a meeting called by its party's chief whip clearly signals something is very seriously wrong. I can tell you this, that as somebody who's been in parliament for a long time, and I have the, you know, I interact with MPs cutting across party lines. This is something which we hear on a regular basis from the MPs. We've been hearing for the last few years that it's very difficult to function in that party for several reasons. Maybe they're not able to get meetings with their leadership. They have, you know, what should I call them? Loud mouths, motor mouths who sort of speak more than they should, who recently were on national television using some of the dirtiest, most vulgar, unparliamentary language, and actually telling the media not to censor them. Quite proudly, in fact, using that kind of language. So these are reasons. And in fact, it was quite a, it was interesting to watch what was happening in the last few days, because those same leaders were at one point saying, you know, first accusing the MPs, their own party MPs, of being involved in corruption. Then they're saying the MPs are good people and they're faithful people and they won't leave the party. Then they're abusing them and calling them things I can't repeat on your channel. Then they're saying, we're in touch with those MPs. And those MPs are with us. So something is obviously wrong. You know, and if I was an MP, if I was a leader of a particular party, we had to deal with such individuals. It's but natural that people would want to move out.
4: Moving on, as Parliament prepares for the monsoon session, political focus is shifting sharply to numbers and the race for a 2/3 majority, with fresh splits and rebellion across parties from Bengal to Maharashtra. The NDA is now looking at whether these shifts can push it closer to the crucial 360 mark, which translates into 2/3 majority. At the center of this political arithmetic is the Shiv Sena UBT rebellion, which, if sealed, say, can indirectly strengthen NDA's position in parliament, and this will be crucial for government's key legislative agendas, including delimitation, women's reservation and electoral reforms. Shifting tracks in a blow to the Congress, the party lost the election for one of the two Rajya Sabha seats up for grabs in Jharkhand because of cross-voting by its India bloc allies. While the Congress alleged that RJD and CPIML, Liberation MLAs, voted for the NDA-backed candidate, the left party denied the accusation. While 28 seats were needed to win a place in the upper house, JMM's Baidyanath Ram got 30 votes, followed by Parimal Natwani with 30, of which 28 were held valid. In fact, Pranav Jha of Congress only managed 20 votes, while Congress on paper had the numbers with ally CPIML with 2 seats and RJD with 4 seats in the mix. Suspected cross-voting has resulted in the shocker win of Parimal Natwani. Numbers suggest that RJD MLAs seem to have cross-voted, with CPIML denying cross-voting. 2 votes were deemed invalid during the election, with Parimal Natwani hitting the magic number. While thanking the workers of the BJP, Natwani pledged to continue to work for Jharkhand. He also thanked Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah for the opportunity.
8: आज राज्यसभा में जो मुझे नॉमिनेशन मेरा एक्सेप्ट हुआ, मैं तहे दिल से झारखंड के सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खास तौर पे हमारे जो विधानसभा के जो एमएलए थे, जो भाजपा ने मुझे अपना नॉमिनेशन करने का मौका दिया, और एज ए इंडिपेंडेंट मुझे चुनाव करने के लिए जो हेल्प किया, उसके लिए मैं सबसे तहे से मैं हमारे देश के वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित भाई, हमारे बीजेपी के सारे यहाँ के सभी लोगों को और राष्ट्रीय नवीन जी का सबका मैं आभार मानता हूँ
9: कि सारे देश का जो माहौल है उससे झारखंड अलग तो नहीं हो सकता है। हम लोग देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और राज्यों में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हमले हो रहे हैं। तो इस तमाम कोशिश जारी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इस बात को समझ रही है कि सबसे बड़ा रुपया, तो जहां रुपया की बात होगी तो वहां तो जो लोकतंत्र का जो उसके जो मूल्य हैं उसको बचाना मुश्किल है।
10: एनडीए गठबंधन पर सभी विधायक इंटैक्ट और पार्टी और भी विधायक ने उनको साथ दिया और धनुबा
11: दुखद है और हम समझते हैं इससे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता है। जो हुआ है वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। आप देख रहे हैं किस तरह से चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे पूरे देश में किस तरह से पार्टियों के सांसदों को खरीदा जा रहा है।
12: बड़ा दुख की बात है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए दुख की बात नहीं। लोकतंत्र के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक बात है। कोई नैतिकता नहीं रह गई है लोगों में। पैसे के सामने लोग बिक जाते हैं। एमएलए एमपी जनप्रतिनिधि भेड़ बकरी की तरह बिक रहे हैं और बोली लगाने वाला होना चाहिए।
13: मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे सभी विधायकों का जिन्होंने मेहनत करके अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। यहां किसके पक्ष में कितने मत मिले वो तय करता है कौन विजय हुआ। दो सीटें थी राज्यसभा के चुनाव के लिए, तीन उम्मीदवार थे। विधायकों ने जो मत दिया उससे दो उम्मीदवार विजय हुए। एक हमारे दल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं। और दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार थे परिमल नाथवानी जी, उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। उनके पक्ष में मुझसे ज़्यादा मत मिले।
14: पांडे जी,
15: मैं कांग्रेस एमएलए रिटर्न से दे सकते और 16 कांग्रेस वोट्स दैट है वहां पर होंगे दैट है चार वोट जेएमएम दिया और कांग्रेस 16 दिया कांग्रेस को 20 बीजेपी निर्दलीय
13: ये तो पीठ पे छुरा
15: इंडिपेंडेंट
4: Slip in a short break. More updates coming up on the other side.

0: even hearing by the central government, they even said that the order was passed without applying mind by the government, without hearing their arguments out. But the government on their side said that this is not the first time they're having problems with the Telegram app. Since May this year, the government has been facing such issues, and it said that despite several requests, the Telegram app has refused to comply with the orders and directions passed by the government. And it said that, in fact, Telegram has started operating like a dark web, sort of, where all sorts of illegal activities are taking place. And unlike other social media intermediaries, Telegram has specific privacy applications, specific privacy features, which hinders the functioning of the government when it comes to curbing such illegal activities. And that's why the government said that this, because of Telegram's non-compliance with its earlier directives, it had to take this measure.
1: All right, so Telegram to remain banned till after the NEET re-exam. So let's tell you now about the preparations that are being made for that re-exam. With the NEET UG re-examination just around the corner in 2 days' time, security and preparations underway in full force. Union Education Minister Dharmendra Pradhan chaired a crucial meeting to review the preparedness as the central government stresses on a fair exam process, smooth as well as secure. The central government stressed on maintaining the credibility of the exam, as nodal officers, police cover and district magistrates have been deployed to oversee the smooth conduct of the re-examination. Meanwhile, as the clock ticks down on the exam date, the National Testing Agency has come out with a message of reassurance for aspirants, asking them to cut out any noise or rumours about the exam. Right, moving on to other news now. And 60 years after Balasaheb Thackeray founded the Shiv Sena, the party's anniversary today is being overshadowed by yet another revolt and controversy. Six of Uddhav Thackeray's 9 Lok Sabha MPs skipped the parliamentary party meeting in Delhi yesterday, which has triggered a show cause notice and protest from the Sena UBT workers. Sources have told NDTV the 6 MPs could now register as a separate faction, with Sanjay Jadhav emerging as their possible leader. NDTV TV's also learned that some of the rebel MPs were together at a Rajasthan resort before heading to Delhi. And amid the escalating political battle, the 6 MPs have now been given Y-plus security cover. Meanwhile, Sanjay Raut has stepped up his attack, insisting the rebels cannot escape disqualification, also saying that they will be unsafe in their constituencies.
2: नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे देश में लाके खड़ी करी है और निष्ठा तो इतनी लेवल पे गई है कि अब वो पूरे देश में अपोजिशन ही खत्म करना चाहते हैं, जिसको मैंने बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी आरएसएस को डेमोक्रेसी एक्सेप्ट नहीं है और उसी के परिणाम अब पूरे देश की जनता देख रही है, लोकतंत्र की रोज हत्या ये लोग कर रहे
3: हैं। ये सब बिके हुए लोग हैं, ये पैसे के पीछे वो लोग पागल हो गए हैं, उनको ना कोई निष्ठा है ना लॉयल्टी है, गांजा पीते हैं, नशा करते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं।
4: हाउस में अगर पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे, पार्टी के व्हीप के खिलाफ मतदान करेंगे, मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे, तब ये सब लागू होता है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और ये आज जो भीप लगाए हैं, आज मीटिंग लगाए, उससे पहले ही अगर उन्होंने नया गढ़ बनाया होगा वही बता सकते हैं, तो उनका भीप कौन पूछने वाला है? क्या भीप कैसा उनकी सांसद रद्द कर सकते हैं? देखो ये धमकाने की बातें कर रहे हैं, वो खासदार है, वो ऐसे चुन के नहीं आए, पिछले दार से अपक्ष करके आमदार चुन के आए।
5: मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर बाला साहब ठाकरे जिनके नेतृत्व में शिवसेना बनी आगे बढ़ी, अगर उद्धव ठाकरे जी और उनके पुत्र परिवार से उनके पार्टी के सांसद विधायक नाराज थे और उन्होंने एक अलग खेमा बनाकर शिवसेना उसमें चलाई, इसमें भाजपा का कहां रोल आता है? तृणमूल कांग्रेस के अंदर अत्याचार ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के कारण उनके सांसद त्रस्त हो, इसमें हमारा कहाँ लेना देना? बंगाल की जनता ने मुक्ति दिलाई टीएमसी से, जो टेरर मर्डर कटमनी के रूप में टीएमसी जानी जाती थी, उससे मुक्ति मिली, तो उनके

0: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना,
1: बाल्टी,
0: और मानसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना। पसीना मत बहाओ, बर्जर रूफ कूलेंट सील लगा।

0: Well, up first, let's get you the latest on the Shiv Sena. And 60 years after Balasaheb Thackeray founded the Shiv Sena, the party's anniversary, which is today, is being overshadowed by a fresh rebellion and rising tensions on the ground. Six of Uddhav Thackeray's nine Lok Sabha MPs remain under scrutiny after skipping a key parliamentary party meeting yesterday, with speculation growing that they're crossing over to the Eknath Shinde camp. Mumbai police has issued an alert over possible clashes, protests and counter-protests ahead of the rival Shiv Sena Foundation Day event at Goregaon and Sion, directing vigilance across the city. Meanwhile, Shinde faction has released a Foundation Day teaser invoking Bal Thackeray's Hindutva legacy, reiterating its claim as the real Shiv Sena. Even as the political battle intensifies, Sanjay Raut insists the rebel MPs cannot escape disqualification.
1: लगता है कि ये बहुत ही निष्ठा की लेवल की राजनीति है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे देश में लाके खड़ी करी है और निष्ठा तो इतनी लेवल पे गई है कि अब वो पूरे देश में अपोजिशन ही खत्म करना चाहते हैं, जिसको मैंने बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी आरएसएस को डेमोक्रेसी एक्सेप्ट नहीं है और उसी के परिणाम अब पूरे देश की जनता देख रही है। लोकतंत्र की रोज हत्या ये लोग कर रहे
2: हैं। ये सब बिके हुए लोग हैं, ये पैसे के पीछे वो लोग पागल हो गए हैं, उनको ना कोई निष्ठा है ना लॉयल्टी है, गांजा पीते हैं, नशा करते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं।
3: हाउस में अगर पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे, पार्टी के व्हिप के खिलाफ मतदान करेंगे, मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे, तब ये सब लागू होता है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और ये आज जो भीप लगाए हैं, आज मीटिंग लगाए, उससे पहले ही अगर उन्होंने नया गढ़ बनाया होगा वही बता सकते हैं, तो उनका भीप कौन पूछने वाला है? क्या भीप कैसा उनकी सांसद रद्द कर सकते हैं? देखो ये धमकाने की बातें कर रहे हैं, वो खासदार है, वो ऐसे चुन के नहीं आए, पिछले दार से अपक्ष करके आमदार चुन के आए।
4: मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर बालासाहेब ठाकरे जिनके नेतृत्व में शिवसेना बनी आगे बढ़ी, अगर उद्धव ठाकरे जी और उनके पुत्र परिवार

0: continues its inquiry into irregularities involved in temple donation, cash and ornaments. 11 people have been questioned so far. No one will be spared.
1: राम भक्तों पर कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
2: जो राम मंदिर का जिस तरीके से डोनेशन स्कैम सामने आया है उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार अब कार्रवाई तेज हो चुकी है।
3: न सिर्फ राम मंदिर, जितने भी मंदिर हैं उन अधिकांश मंदिरों में चोरियां होती हैं। ये मामला है, बहुत गंभीर मामला है और मैं समझता हूँ इस पर सख्त कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है।
0: All right, let's get you all the latest developments ahead of the NEET re-exam. And in a significant setback for Telegram, the message sharing service, and a major boost for Center, the Delhi High Court today has upheld the government's decision to block the messaging platform in connection with the NEET paper leak investigation. The court ruled that the government had followed the procedure laid down under Section 69A of the IT Act and found reasons provided for the ban to be sufficient, particularly given the emergency nature of the situation to prevent any leaks ahead of the NEET re-exam. The High Court rejected Telegram's challenge, stating that the orders were well-founded, supported by reasons, and showed no non-application of mind. The court also held that the platform falls within the ambit of the information under the IT Act. And with this ruling, now Telegram will remain blocked, marking a major legal victory for the centre. It remains blocked till after the NEET re-exam. So with the NEET UG 2026 re-examination round the corner in 2 days' time, security and preparations are underway in full force. Union Education Minister Dharmendra Pradhan chaired a crucial meeting to review re-exam preparedness as central government stresses on a fair exam process. The central government has stressed on maintaining the credibility of the exam, as nodal officers, police cover and district magistrates have been deployed to oversee the smooth conduct of this re-exam. Remember, the first NEET exam was cancelled due to paper leak. Meanwhile, as the clock ticks down on the exam date, the National Testing Agency has come out with a message of reassurance for aspirants, asking them to cut out any noise or rumours regarding the exam. Well, moving on to news now from Tamil Nadu, and the Tamil Nadu Assembly unanimously adopted a resolution opposing the Karnataka's proposed Mekedatu Dam project across the Kaveri River. So the Kaveri River once again coming into focus. The resolution urges the centre not to grant any technical, environmental or other approvals to the project, and calls on the commission not to process the detailed project report by Karnataka. Chief Minister Vijay said Kaveri Basin is already a water deficit basin and that no new project should be taken up without the consent of all basin states. Meanwhile, opposition there, Udayanidhi Stalin and AIADMK Chief Edappadi K. Palaniswamy, both welcomed the resolution reflecting broad political unity in Tamil Nadu against the Mekedatu project. And responding to this resolution, Karnataka Minister Priyank Kharge maintained that Karnataka is not seeking to reduce anyone's water share, adding that both states are free to pursue their legal options.
4: Kaveri Naduvar Mandram 5-2-2007 அன்று அளித்த இறுதி தீர்ப்பையும் மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்றம் 16-2-2018 அன்று அளித்த தீர்ப்பையும் மதிக்காமலும் சம்பந்தப்பட்ட படுகை மாநிலங்களின் இசைவை பெறாமலும் ஒன்றிய அரசின் எந்தவித அனுமதியை பெறாமலும் கர்நாடக அரசு தனிச்சையாக காவிரி நதியின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணை கட்ட முயற்சி மேற்கொள்வதை எந்த வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதால் கர்நாடக அரசின் இச்செயலுக்கு தனது கடும் எதிர்ப்பை இப்பேரவை தெரிவித்துக் கொள்கிறது.
5: கர்நாடக மேகதாது அணை கட்டுறதை தடுக்க சட்ட ரீதியாகவும் பிரதமர் மூலமாகவும் இந்த அரசு எடுக்கின்ற அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நிச்சயமாக துணை நிற்கும். மேகதாது அணை கட்ட முயற்சிக்கு கூடிய கர்நாடக அரசை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து ஒற்றுமையாக இருந்து தடுத்து நிறுத்துவோம் என்று கூறி இந்த தீர்மானத்திற்கு எங்களுடைய முழு ஆதரவை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.
6: தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இஸ் ஃப்ரீ டு பாஸ் வாட் எவர் ரெசல்யூஷன் தே வாண்ட். இட் இஸ் நாட் த ப்ரெரோகேட்டிவ் ஆர் இட் இஸ் நாட் அவர் பிஸ்னஸ் வாட் தே பாஸ் ரெசல்யூஷன்ஸ். Quite naturally, every state works in the interest of its people. Tamil Nadu people are working in their in the interest of the Tamil people. We will work in the interest of the Kannadigas. There is nothing wrong with that. If they already, there is order by the Supreme Court. And if they want to go ahead with the legal battle or find a legal remedy for this, they are welcome to do so. We are not trying to take away anybody's rights. We are not trying to take away anybody's right for water. Whatever is excess flowing, that's all we are trying to harness for our people. And legally, whatever needs to be done, they can also do. So are we free to do.
7: See, a resolution is not just enough. The state government should fight it out. They should go and approach the government of India. They should have approached the tribunal, Kaveri Water Tribunal, and asked them to intervene. And they should have gone to Karnataka and speak with the chief minister and say that this is unlawful, because it is unlawful. No water can be stopped to the lower riparian rivers in any river body. It is in international law. If they are building a dam and not releasing water to Tamil Nadu, it is against the international law. All those things they should have told. They should have acted on this. Just a resolution is not enough, because many resolutions were passed in this house. A resolution is not enough. Some strong action has to be taken.
0: Now, in a blow to the Congress party, the party lost the election for one of the two Rajya Sabha seats up for grabs in Jharkhand because of cross-voting by its India bloc allies. While Congress alleged that RJD and CPIML Liberation MLAs voted for the NDA-backed candidate, the left party has denied these accusations, in fact, hit out over this. While 28 seats were needed to win a place in the upper house, JMM's Baidyanath Ram got 30 votes, followed by Parimal Nathwani with 30, of which 28 were held valid. Pranav Jha of the Congress, however, only managed 20 votes. While the Congress on paper had the numbers with allies, CPML with 2 seats and RJD with 4 seats in the mix, suspected cross-voting has resulted in this shocker win of Parimal Nathwani. Numbers suggest the RJD MLAs seem to have cross-voted, with CPIML denying any cross-voting. 2 votes were also deemed invalid during the election, with the Parimal Nathwani hitting that magic number. While thanking the workers of the BJP, Nathwani pledged to continue to work for Jharkhand. He also thanked Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah for the opportunity again.
8: आज राज्यसभा में जो मुझे नॉमिनेशन मेरा एक्सेप्ट हुआ, मैं तहे दिल से झारखंड के सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खास तौर पे हमारे जो विधानसभा के जो एमएलए थे, जो भाजपा ने मुझे अपना नॉमिनेशन करने का मौका दिया और एज ए इंडिपेंडेंट मुझे चुनाव करने के लिए जो हेल्प किया, उसके लिए मैं सबसे तहे से मैं हमारे देश के वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित भाई, हमारे बीजेपी के सारे यहाँ के सभी लोगों को और राष्ट्रीय नवीन जी का सबका मैं आभार मानता हूँ।
9: सारे देश का जो माहौल है उससे झारखंड अलग तो नहीं हो सकता है। हम लोग देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और राज्यों में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हमले हो रहे हैं। तो इस तमाम कोशिश जारी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इस बात को समझ रही है कि सबसे बड़ा रुपया, तो जहां रुपया की बात होगी तो वहां तो जो लोकतंत्र का जो उसके जो मूल्य हैं उसको बचाना मुश्किल है।

0: ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਯਹਾਂ ਸੇ 2012 ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਨਾ ਯਹਾਂ ਕੀ ਔਰ ਆਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਕੋ ਸਮਝਾ ਰਹਾ ਹਰ ਸਭ ਕੋ ਇੱਕ ਲਾਭ ਇਸ ਔਰ ਆਖਿਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੇ ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਔਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਥ ਦਿਆ ਔਰ ਆਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ
1: दुखद है और हम समझते हैं इससे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता है। जो हुआ है वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। आप देख रहे हैं किस तरह से चाहे महाराष्ट्र हो चाहे वेस्ट बंगाल हो चाहे पूरे देश में किस तरह से पार्टियों के सांसदों को खरीदा जा रहा है।
2: बड़ा दुख की बात है और एक कांग्रेस पार्टी के लिए दुख की बात नहीं है। लोकतंत्र के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक बात है। कोई नैतिकता नहीं रह गई है लोगों में। पैसे के सामने लोग बिक जाते हैं। एमएलए एमपी जनप्रतिनिधि भेड़ बकरी की तरह बिक रहे हैं और बोली लगाने वाला होना चाहिए।
3: मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे सभी विधायकों का जिन्होंने मेहनत करके अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। यहां किसके पक्ष में कितने मत मिले वो तय करता है कौन विजय हुआ। दो सीटें थी राज्यसभा के चुनाव के लिए, तीन उम्मीदवार थे। विधायकों ने जो मत दिया उससे दो उम्मीदवार विजय हुए। एक हमारे दल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं। और दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार थे परिमल नाथवानी जी, उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। उनके पक्ष में मुझसे ज़्यादा मत मिले।
4: पांडे जी,
5: मैं कांग्रेस एमएलए से रिटर्न से दे सकते और 16 कांग्रेस वोट दिया है, वहां पर हमने चार वोट दिया है, चार वोट एमएलए दिया और कांग्रेस 16 दिया, कांग्रेस को 20 बीजेपी निर्दलीय
3: ये तो पीठ पे छुरा
5: इंडिपेंडेंट
6: All right, so another Rajya Sabha seat there lost by the Congress party. With that, we'll slip into a short break. On the other side, we'll take a look at how the stock markets are faring this Friday. Stay with us. The Delhi High Court upholds the Telegram ban in India till June 22nd in view

0: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना,
1: बाल्टी,
0: और मानसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना। पसीना मत बहाओ, बर्जर रूफ कूलेंट सील लगाओ, ये छत के क्रैक्स को करे सील और आपको दे ठंडा फील। बर्जर।
2: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea.

0: COVID pandemic here in the state of West Bengal, and huge sums of money had gone into his account because it was sold outside the ration shops separately at a higher rate. But of course, he is now out on bail. Trinamool Congress Chief Mamata Banerjee had been vehemently supporting Jyotiprayo Malik even when he was arrested and when he was in a prison. He had been let out on bail, and right after that, the Trinamool Congress gave him a ticket to fight the recent West Bengal assembly elections from Habra, and thereafter he lost that election. He has not been in the political square in a long time because of his arrest and then his health reasons that he has cited previously in the resignation letter. But of course, the Trinamool Congress has been hinting at how the central agencies are reportedly being misused against its leaders to get them to support and break away support from the Trinamool Congress and extend their support to the BJP indirectly.
1: All right, Shreshi, thanks so much for joining us with all those latest developments. And from Trinamool Congress now to Shiv Sena UBT. 60 years after Balasaheb Thackeray founded the Shiv Sena, the party's anniversary being overshadowed by the fresh rebellion and rising tensions on the ground. Remember, six of Uddhav Thackeray's 9 Lok Sabha MPs remain under scrutiny after skipping a key parliamentary party meeting yesterday, with speculation growing that they could cross over to the Eknath Shinde camp. That's what sources in the Shinde camp have been claiming. Mumbai police has issued an alert over possible clashes, protests and counter-protests ahead of the rival Shiv Sena Foundation Day events that are planned today in Goregaon and Sion, directing strict vigilance across the city. Meanwhile, the Shinde faction released a Foundation Day teaser invoking Bal Thackeray's Hindutva legacy and reiterating its claim as that they are the real Shiv Sena. This even as the political battle intensifies. Sanjay Raut is insisting that the rebel MPs cannot escape disqualification proceedings.
2: लगता है कि ये बहुत ही निष्ठा की लेवल की राजनीति नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे देश में लाके खड़ी करी है, और निष्ठा तो इतनी लेवल पे गई है कि अब वो पूरे देश में अपोजिशन ही खत्म करना चाहते हैं, जिसको मैंने बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी आरएसएस को डेमोक्रेसी एक्सेप्ट नहीं है, और उसी के परिणाम अब पूरे देश की जनता देख रही है, लोकतंत्र की रोज हत्या ये लोग कर रहे हैं।
3: ये सब बिके हुए लोग हैं, ये पैसे के पीछे वो लोग पागल हो गए हैं, उनको ना कोई निष्ठा है ना लॉयल्टी है, गांजा पीते हैं, नशा करते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं।
4: हाउस में अगर पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे, पार्टी के व्हिप के खिलाफ मतदान करेंगे, मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे, तब ये सब लागू होता है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और ये आज जो व्हिप लगाए हैं, आज मीटिंग लगाए, उससे पहले ही अगर उन्होंने नया गढ़ बनाया होगा वही बता सकते हैं, तो उनका व्हिप कौन पूछने वाला है? क्या व्हिप, कैसा उनकी सांसद रद्द कर सकते हैं? देखो, ये धमकाने की बातें कर रहे हैं, वो खासदार है, वो ऐसे चुन के नहीं आए, पिछले दार से अपक्ष करके आमदार चुन के आए।
5: मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर बालासाहेब ठाकरे जिनके नेतृत्व में शिवसेना बनी आगे बढ़ी, अगर उद्धव ठाकरे जी और उनके पुत्र परिवार से उनके पार्टी के सांसद विधायक नाराज थे और उन्होंने एक अलग खेमा बनाकर शिवसेना उसमें चलाई, इसमें भाजपा का कहाँ रोल आता है? तृणमूल कांग्रेस के अंदर अत्याचार ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के कारण उनके सांसद त्रस्त हो, इसमें हमारा कहाँ लेना देना? बंगाल की जनता ने मुक्ति दिलाई टीएमसी से, जो टेरर मर्डर कटमनी के रूप में टीएमसी जानी जाती थी, उससे मुक्ति मिली, तो उनके सांसदों ने मुक्ति ले ली दीदी और भाईपो से।
6: आज के ये जो कार्यकर्ता या नेता जो एमपीज है ना, मैक्सिमम जो है ना, ये जो है आइडियोलॉजी पे नहीं बल्कि लोभी हो गए हैं, लालची हो गए हैं, डरपोक हो गए हैं, या तो पैसे की लालच या तो डर। मेरा कहना है कि एक ऐसा जो इंसाफ तो ये होगा कि वोट अगर मैंने किसी को दिया है ये समझ के कि ये पार्टी की आइडियोलॉजी मेरे लिए अच्छी है, और वो आदमी मुझसे वोट ले करके एमपी बन जाए और फिर अपनी मर्जी से वो पार्टी छोड़ के चला जाए, मैं समझता हूँ ये चीटिंग है। और चुन के आने के बाद वो आदमी

0: Hello and welcome. You're watching NDTV. A big setback to the US-Iran peace process and the 60-day negotiations as Israel strikes Lebanon. The meeting in Geneva has been postponed. Also on Rahul Gandhi's birthday, a controversy over a poster depicting him as Lord Parshuram. All that and more coming up ahead. First, a look at the headlines. Udhav versus Shinde plays out on the Shiv Sena's 60th Foundation Day. Protests erupt against the six rebel MPs, sources tell NDTV. The rebels will not attend Shiv Sena Foundation Day celebrations led by Eknath Shinde. A row erupts over Rahul Gandhi, a birthday tribute after Congress workers portray a Congress MP as Lord Parshuram with an axe in one hand and the Constitution in the other. BJP demands an apology. UP Chief Minister Yogi Adityanath visits Ayodhya, breaks his silence on the Ram Mandir donation theft case, vows strict action, says the SIT is probing the matter. The Delhi High Court has upheld the Telegram ban in India till the 22nd of June in view of the NEET re-exam, says measures by centre least restrictive, not unreasonable. The Tamil Nadu government adopts a resolution against the Mekadatu project on the Kaveri River. Udayanidhi and EPS welcome the resolution. Karnataka Minister Priyank Kharge says the state is not seeking to reduce anyone's water share. And US-Iran peace talks in Switzerland have been postponed. J.D. Vance cancels his trip. Israel escalates strikes against Hezbollah. 16 people have been killed in strikes in Lebanon. All right, our top story now. In a birthday celebration for Rahul Gandhi has snowballed into a controversy. In Varanasi, Youth Congress workers performed. They poured milk on the poster depicting Rahul Gandhi in Lord Parshuram-like avatar, holding an axe in one hand and the Constitution in the other. The BJP hit back sharply, calling this comparison an insult to Bhagwan Parshuram and accusing the Congress of practicing election-time Hindutva, saying that this is an insult to Sanatan Dharm. The Congress, meanwhile, has rallied behind Rahul Gandhi, praising his leadership and projecting him as the face of the opposition's political challenge ahead.
1: दिख रहा है तस्वीर में कि राहुल गांधी को परशुराम अवतार में दिखाया गया है और फूल और दूध चढ़ाकर उनका जन्मदिन मनाया है पार्टी के कार्यकर्ताओं ने. बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की तुलना परशुराम भगवान से की गई है, यह अपमान है, परशुराम भगवान का सनातन का अपमान है. क्या आपका जवाब?
2: देखिए, जो भी लोग वहाँ पर थे वो स्वयं सब ब्राह्मण लोग थे. जिन लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था उनकी भावनाएँ थी, वो स्वयं परशुराम के वंशज अपने आप को मानते हैं. मुझे नहीं लगता कहीं पर भी उसमें कोई चीज़ गलत है, उनकी भावनाएँ हैं. अब बात आती है दूसरा विषय सनातन वाला. बीजेपी भी सनातन की बात करेगी? अरे प्रभु राम का चंदा चोरी करके खा गए तुम लोग, गाय को काटने की परमिशन देते हो, शंकराचार्य की पालकी उठा के फेंक देते हो, शंकराचार्य के ऊपर पॉक्सो जैसा केस लगवाते हो अपने प्रशासन से, तुम लोग भी बात करोगे? भाजपा ने जितना सनातन का नुकसान किया है आज तक किसी ने नहीं किया. और नया नया तो जो प्रकरण है, अभी तक तो चंदा चोर थे, अब तो चढ़ावा चोर हो गए. अरे चढ़ावा और प्रभु राम के हीरे जवाहरात के सब आभूषण खा गए आरएसएस और भाजपा वाले, ये भी सनातन की बात करेंगे? भाजपाइयों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रभु राम के आभूषण चोरी करने की? भाजपाइयों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाय को काटने की परमिशन देने की? तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी.
3: मैं जन्मदिन का बधाई देता हूँ, लेकिन भगवान परशुराम को गाली नहीं दे सकता. मैं भगवान परशुराम की तुलना उस आदमी से दिया जाए जिनका अभी तक देश जानता नहीं वो किस धर्म को मानते हैं और क्या करते हैं, किसने दर्शाया मैं नहीं जानता.
4: Congress supporters can dream of making Rahul Gandhi the Prime Minister on his birthday, but the truth is just 24 hours back their own alliance partner JMM exposed the Congress party, where the alliance partners of the Congress did not vote for the Congress Rajya Sabha candidate in Jharkhand. The 2029 elections, the Hindus of India, the Sanatanis of India, the people of India.

0: have made up their mind to support Prime Minister Narendra Modi. They've also seen how on Rahul Gandhi's birthday, the Congress supporters have at one point ensured that they have insulted Bhagwan Parshuram. At the same time, they've said that 365 days, out of 365 days, one day the Congress party will remember Hindus, 364 days they'll do appeasement politics.
1: Bhagwan Parshuram ki barabari karna Rahul Gandhi ji ko kafi mehenga padega. ये हो ही नहीं सकता. जो सनातन विरोधी है, जो वो कैसे भगवान परशुराम की बराबरी के बारे में सोच भी सकता है. राहुल गांधी जी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके वंशजों ने ही गोपाष्टमी के दिन गौरक्षकों पर, संतों पर लाठियां और गोलियां चलवा करके नई दिल्ली को, संसद भवन के आसपास को खून से रंगने का काम किया था.
2: जिस किस्म से उसने विपक्षी नेतृत्व किए हैं, जिस किस्म से उन्होंने इतना सख्त रहा, रेजोल्यूट, रेजिलियंट, इसी किस्म से आगे बढ़ाना है. अब देखो, 10 साल के बाद हमें केरला में एक जीत हुई, अगले साल अगर कुछ सालों के बाद पंजाब में जीत हुई, अगर उत्तराखंड में, अगर तो बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं हमारे विपक्ष की किस्मत में. अब मेरे ख्याल में उनका जो डिटर्मिनेशन है, उनका जो कन्विक्शन है, ये सब लग के आगे जाना है हमारे पार्टी को. इसलिए कांग्रेस के हर रंग आए हैं, बहुत दूर से भी आए हैं, उनको बिल्कुल उनको विश करने के लिए, समर्थन देने.
3: पूरे देश में खासकर युवा आज उनको देखते हैं एक ऐसे इंसान की तरह जो उनकी उम्मीदों को बढ़ाना चाहता है. जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, एग्जामिनेशन प्रणाली है, उस पर लोगों का विश्वास टूट रहा है और एक बहुत असमंजस लोगों के जहन में है. उसका मुकाबला करने के लिए, बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए, न्याय दिलाने के लिए वो काम कर रहे हैं. और आज के दिन मेरी शुभकामनाएं उनको, और मुझे लगता है उनका, उनकी जो मेहनत है ये ज़रूर रंग लाएगी.
4: All right, let's go across to Janendra for more. And Janendra, it is Rahul Gandhi's 56th birthday and a controversy now over this poster which depicts him as Parshuram with, you know, an axe in one hand and constitution in the other. The BJP demanding an apology, but the Congress quite dismissive of this.
5: Yes, and Congress is also defending their party workers who are depicted Rahul Gandhi as Parshuram in Banaras. And Congress is saying that earlier also we have seen that BJP workers have done such thing. They have depicted Prime Minister as different gods. So Congress is saying that it is the emotion and sentiment of party workers, and BJP have no right to criticize this. But yes, on birthday of Rahul Gandhi, the way Banaras Congress workers have celebrated, BJP have got a chance to criticize Congress party, especially BJP is saying that the way Congress workers have celebrated birthday of Rahul Gandhi, it is anti-Sanatan. But Congress is unapologetic, and Congress is defending and saying that these are the sentiments of party workers, and BJP supporters have also done such thing in past.
4: All right, Janendra, we'll leave it there. Thanks so much for joining us there with the latest developments. In other news now, 60 years after Balasaheb Thackeray founded the Shiv Sena, the party's anniversary is being overshadowed by a fresh rebellion and rising tension on the ground. Six of Uddhav Thackeray's 9 Lok Sabha MPs remain under scrutiny after they skipped a key parliamentary party meeting that was called yesterday, with speculation continuing that they are crossing over to the Eknath Shinde camp. Mumbai police has also issued an alert over possible clashes today, protests and counter-protests ahead of rival Shiv Sena Foundation Day events, which will take place in Goregaon and Sion, directing strict vigilance across the city. Meanwhile, the Shinde faction released a Foundation Day teaser invoking Bal Thackeray's Hindutva legacy, reiterating its claim as the real Shiv Sena. This even as the political battle intensifies. Sanjay Raut, a close aide of Uddhav Thackeray, insists the rebel MPs cannot escape disqualification proceedings.
6: लगता है कि ये बहुत ही निष्ठा की लेवल की राजनीति है. नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे देश में लाके खड़ी करी है, और निष्ठा तो इतनी लेवल पे गई है कि अब वो पूरे देश में अपोजिशन ही खत्म करना चाहते हैं. जिसको मैंने बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी आरएसएस को डेमोक्रेसी एक्सेप्ट नहीं है, और उसी के परिणाम अब पूरे देश की जनता देख रही है. लोकतंत्र की रोज हत्या ये लोग कर रहे हैं.
7: ये सब बिके हुए लोग हैं, ये पैसे के

0: wait and see, because the next election will be 2029, and at that time, unless things change, the DMK and Congress will be fighting against each other, and that idea of an India bloc with DMK at the center will not work, because again they will be fighting for MPs in the state. In the year 2024, the DMK Congress alliance swept the elections in Tamil Nadu, and already Congress leaders say now that TVK has taken Congress as an ally, and many of the DMK allies also have switched to the TVK. In the 2021 elections, the TVK Congress combined, they say, will sweep the Lok Sabha election. So how long will this be valid? That's a big question. But for at the moment, at least, both sides seem to be warming up in a sense to each other through this birthday greeting and Rahul's response, Karthi.
1: That's right, Sam. And perhaps this is more with a view of the upcoming monsoon session, you know, even as the NDA is inching towards that two-thirds majority in Parliament. Thanks so much for joining us with those details and staying with news of Rahul Gandhi's birthday. Now, a tribute by Congress workers to Rahul Gandhi in Varanasi has turned controversial. And this is after workers portrayed Rahul Gandhi as Lord Parshuram in a poster holding an axe in one hand and a constitution in the other hand. And this is snowballed into a big controversy, with the BJP hitting back sharply, calling this comparison an insult to Bhagwan Parshuram, also accusing the Congress of practicing election time Hindutva. The Congress on its part has hit back at the BJP, rallying behind Rahul Gandhi, praising his leadership, projecting him as the face of the opposition's political challenge ahead, and also questioning the BJP over the case in the Ram Mandir in Ayodhya. Listen in to some reactions.
2: दिख रहा है तस्वीर में कि राहुल गांधी को परशुराम अवतार में दिखाया गया है और फूल और दूध चढ़ाकर उनका जन्मदिन मनाया है पार्टी के कार्यकर्ताओं ने. बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की तुलना परशुराम भगवान से की गई है, ये अपमान है, परशुराम भगवान का सनातन का अपमान है. क्या आपका जवाब?
3: देखिए, जो भी लोग वहाँ पर थे वो स्वयं सब ब्राह्मण लोग थे. जिन लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था उनकी भावनाएँ थी, वो स्वयं परशुराम के वंशज अपने आप को मानते हैं. मुझे नहीं लगता कहीं पर भी उसमें कोई चीज़ गलत है, उनकी भावनाएँ हैं. अब बात आती है दूसरा विषय सनातन वाला. बीजेपी भी सनातन की बात करेगी? अरे, प्रभु राम का चंदा चोरी करके खा गए तुम लोग, गाय को काटने की परमिशन देते हो, शंकराचार्य की पालकी उठा के फेंक देते हो, शंकराचार्य के ऊपर पॉक्सो जैसा केस लगवाते हो अपने प्रशासन से, तुम लोग भी बात करोगे? भाजपा ने जितना सनातन का नुकसान किया है आज तक किसी ने नहीं किया. और नया नया तो जो प्रकरण है, अभी तक तो चंदा चोर थे, अब तो चढ़ावा चोर हो गए. अरे, चढ़ावा और प्रभु राम के हीरे जवाहरात के सब आभूषण खा गए आरएसएस और भाजपा वाले, ये भी सनातन की बात करेंगे? भाजपाइयों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रभु राम के आभूषण चोरी करने की? भाजपाइयों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाय को काटने की परमिशन देने की? तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी.
4: मैं जन्मदिन का बधाई देता हूँ, लेकिन भगवान परशुराम को गाली नहीं दे सकता. मैं भगवान परशुराम की तुलना उस आदमी से दिया जाए जिनका अभी तक देश जानता नहीं वो किस धर्म को मानते हैं और क्या करते हैं, किसने दर्शाया, मैं नहीं जानता.
5: Congress supporters can dream of making Rahul Gandhi the Prime Minister on his birthday, but the truth is, just 24 hours back, their own alliance partner JMM exposed the Congress party, where the alliance partners of the Congress did not vote for the Congress Rajya Sabha candidate in Jharkhand. The 2029 elections, the Hindus of India, the Sanatanis of India, the people of India have made up their mind to support Prime Minister Narendra Modi. They've also seen how on Rahul Gandhi's birthday, the Congress supporters have at one point ensured that they have insulted Bhagwan Parshuram. At the same time, they've said that 365 days, out of 365 days, one day the Congress party will remember Hindus, 364 days they'll do appeasement politics.
6: Bhagwan Parshuram ki barabari karna Rahul Gandhi ji ko kafi mehenga padega. ये हो ही नहीं सकता. जो सनातन विरोधी है, जो वो कैसे भगवान परशुराम की बराबरी के बारे में सोच भी सकता है? राहुल गांधी जी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके वंशजों ने ही गोपाष्टमी के दिन गौरक्षकों पर, संतों पर लाठियां और गोलियां चलवा करके नई दिल्ली को, संसद भवन के आसपास को

0: Well, it's protest versus protest that's playing out in Maharashtra today. It's also party versus party and Sena versus Sena yet again. Eknath Shinde-led Shiv Sena party has countered Shiv Sena UBT's protest today. Shiv Sena is protesting against UBT Sena even as the UBT Sena faces a crisis of sorts with six MPs of the nine Lok Sabha MPs of the party threatening to walk out. Shinde workers have protested against Sanjay Raut. Workers of the Shinde-led Shiv Sena have hit out at the MP's photo with footwear during a counter-protest, and this happened in Bandup today in Mumbai, and this is in support of rebel MP Sanjay Dina Patil. Let's take a look at this report.
1: एक तरफ शिवसेना 60 साल की सालगिरह मना रहा है, दूसरी तरफ दूसरी फूट आ गई है. एक कार्यकर्ता के तौर पे आपके दिल में क्या फीलिंग्स है फिलहाल?
2: हमारे फीलिंग ये है कि ये इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे अच्छे लोग आएंगे. ये जो छह गंगे हैं ना, इससे अच्छे लोग आएंगे. और हमारे पास जो अरविंद सावंत है, अनिल देसाई है और वाजे साहब नासिक के, ये मजबूत लीडर है. और आवाम जो है, जनता जो है, वो साहब के साथ में है, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, हर लोग साहब के साथ.
1: इसमें शिवसेना के वर्कर्स को कितना फर्क पड़ेगा? क्या उनकी आत्मबल, आत्मविश्वास कम हो जाएगा उनका?
3: नहीं नहीं, बिल्कुल कम होने नहीं जाने, बढ़ जाएगा आत्मविश्वास. हाँ,
1: क्या आपको लगता है कि शिवसेना इससे वापस आ सकती है?
4: इससे ज्यादा और तेजी से बढ़ेगी. जो जैसे पहले हुई थी ना, वैसे वो हिसाब से पहले होगी. आज अगर उद्धव साहब ने एक आह्वान किया ना कि इनको तुड़ाओ, तो वो उनको भी तुड़ाएंगे सब. ऐसे बड़ा
3: के माहौल भी देखो कैसा है.
1: आप मुझे बताइए कि आगे जाके आप भरोसा कैसे करोगे नेताओं पे, क्योंकि आप उनको मतदान करते, वो छोड़ के चले जाएंगे. आगे भी ऐसा हो सकता है?
3: होने के लिए कुछ भी हो सकता है, उसे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. हम सिर्फ उद्धव साहब का आदेश का राह देख रहे हैं.
0: In the midst of Operation Trigger, posters have now emerged, and these are against rebel MPs, and they could be seen outside Shanmugananda Hall, where Uddhav Thackeray is all set to address the event of the foundation day of the Shiv Sena. On the other hand, in Goregaon at NESCO ground, where Eknath Shinde's event is scheduled, posters showing development and work that have been done by the present government have also come up, and these posters also talk about popular schemes of the Mahayuti government. These posters are on display there, all eyes on what both leaders are expected to speak on Operation Tiger. Well, 60 years ago, on the 19th of June, 1966, Balasaheb Thackeray founded Shiv Sena as a movement that was rooted in Marathi pride and regional identity. He, in fact, also spoke about national sentiment. Six decades later, as the party marks its foundation day today, a fresh political storm has cast a shadow over all the celebrations that are to take place. The battle is no longer over the legacy that was built by Balasaheb Thackeray. It's also about who carries that legacy forward, who commands the loyalty of the cadre and elected representatives, and whether Uddhav Thackeray can once again hold his party together in the face of yet another challenge. 60 years after Balasaheb Thackeray founded the Shiv Sena, the party's anniversary is now being celebrated by two people. Eknath Shinde led Shiv Sena, and Uddhav Thackeray

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where cool UI UX designer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: is saying it's the Congress. RJD is saying it's the Congress. Congress is saying it's definitely the RJD. What's going on? And before you do that, let me quickly tell our viewers what it is that we are talking about. Now, what happened was that in Jharkhand yesterday, there were two seats which were up for grabs. On one, there was a JMM candidate. You know that the JMM is in power there along with the Congress. So the total number of MLAs of the JMM and Congress put together were 56. But what ended up happening? There were two candidates, one from the JMM and one, Pranav Jha, from the Congress. The JMM candidate got the needed 30 votes and he won. Whereas the Congress candidate got only 20 votes. He should have got 26 votes. Total only 50 votes were polled here. Where did those 6 votes go? Here is where it went. You had only 24 MLAs with the NDA, but Parimal Nathwani, who was an independent backed by the NDA, ended up getting 30 votes. Who are these 6 people, Professor Saab, who have cross-voted? Did you stab the Congress in the back?
1: देखिए पद्मजा जी, धोखा देना तो हमारे पार्टी के और नेता के इतिहास में नहीं रहा। धोखा की जो उपज है वो भारतीय जनता पार्टी है। जनता पार्टी में ज्वाइन किया 77 में और बीजेपी 80 में आ गया। पहला धोखा वहां दिया, जनता दल में गया, जनता दल और की सरकार बनी, उसमें सरकार में रहे, मंडल कमीशन लागू हुआ, उन्होंने सरकार तोड़ दिया। दूसरा धोखा दिया हिंदुत्व को लेकर है, धोखा देना तो उनके इतिहास में है। जहां तक झारखंड का सबसे चौंकाने वाला खबर ये होना चाहिए कि भाजपा ने तो पूरा का पूरा इतना MLA बेच दिया, इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है।
0: अरे सर, आपके MLA ने किसको वोट दिया और ये 6 MLA किसके थे?
1: नहीं, हमारे MLA ने तो महागठबंधन कैंडिडेट को वोट दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी को RJD के कोई भी लोग वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो भारत
0: तो को आगे बढ़ाने के लिए। कांग्रेस के खुद के लोगों ने राहुल गांधी को धोखा दिया।
1: अब ये कांग्रेस का काम है पता करना कि उनके लोगों ने कहां वोट दिया, लेकिन हमारे दल के तो कोई भी विधायक।
0: एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द की इशू, वी कीप टॉकिंग अबाउट राहुल गांधी बीइंग द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इफ यू कैनॉट कंट्रोल योर ओन पार्टी आशुतोष जी, देन हाउ आर यू गोइंग टू एवर रीच टू द टॉप?
1: पद्मजा जी,
0: इफ ऑर्गेनाइजेशनली यू कांट इवन फिगर आउट योर MLAs एट द लेवल ऑफ झारखंड, देन हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज टू गेट टू 7 लोक कल्याण मार्ग?
2: See, Padmaja, that if what applies to Rahul Gandhi and what applies to the Congress, that equally applies to the BJP, Narendra Modi or Amit Shah in Karnataka. You know, the Legislative Council election happened. BJP candidate was supposed to get 30 votes.
0: 100%. India, but the problem is with the Congress or India, it happens again and again. It happened with them in Bihar. It's happening them in Jharkhand. It happened with them in Madhya Pradesh.
3: Karnataka mein ye hua hai ki Bharatiya
2: Janata. Let me complete.
0: Let me complete. I'm coming to you. Yes.
2: Let me complete. Lingaraj Patil was a BJP candidate. He got only 27 votes, supposed to get 30 votes. Then there is another gentleman whose name is Raghu Kautilya. He got 29 votes. So the BJP MLAs and others also cross-voted. And the Congress successfully managed to win 5 legislative council votes. Now, if Narendra Modi and Amit Shah can't control their own leaders in Karnataka, supposed to be so powerful, having government in 14 states, in 22 NDA governments, and extremely powerful, then what are you talking about?
0: राहुल गांधी की वीकनेस क्यों डिस्कस की जा रही है?
3: कल अभी आशुतोष जिक्र कर रहे थे कर्नाटका MLC इलेक्शन का, कि भारतीय जनता पार्टी के MLAs ने क्रॉस वोटिंग की, उसका असर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन कर्नाटका के स्टेट प्रेसिडेंट को दिल्ली बुला लिया है, फोन पर बात की और दिल्ली बुला लिया, बिल्कुल सबको दिल्ली बुला लिया। क्या राहुल गांधी ने झारखंड की हार को लेकर इस तरह से कोई बात की? क्या मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का जब पर्चा खारिज होता है तब राहुल गांधी ने इस तरह से एक्टिविटी की? मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को जब झारखंड का चुनाव देखना था वो कोटा चले गए, अपने कोटे की सीट को बचाना था तो वो कोटा चले गए। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को झारखंड में देखना था कि जब परिमल नाथवानी वहाँ उम्मीदवार है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है तो वो सुनिश्चित करते, हेमंत सोरेन से बात करते, झारखंड में RJD से बात करते और अपने
0: In fact, some people said that Bhupesh Baghel, who was sent there to be an observer, did only 2 meetings. He went and met Hemant Soren only once.
2: Rahul Gandhi ki to chhod dijiye na. Bhai, Amit
0: Shah kaise sakte hain? Aaj pura debate hi unke upar hai, unka birthday hai.
2: No. Let me complete. Jo Samir baat keh rahe hain, bhai Narendra Modi aur Amit Shah jaise powerful leaders ke hone ke bawajood bhi Karnataka ke andar BJP ke log cross voting kar rahe hain, kya aaj ki sabse badi khabar hai ya nahi? Forget about Rahul Gandhi. Rahul Gandhi is weak, Congress is weak, NDA the whole
0: answer that Ajay Alok, you think you are invincible, look how you were humiliated in Karnataka. DK

0: Kumar humiliated you in Karnataka.
1: Padmya, let me complete. Padmya, let me complete. And then in Jharkhand, you are not putting up your own candidate. You are putting some money back. This is the kind of politics you are doing. Why the BJP did not put up his candidate in Jharkhand?
0: Dr. Ajay Alok. They managed to win Kerala. They managed to become a part of the government in Tamil Nadu. They now have governments in Karnataka, in Himachal Pradesh, and they managed to embarrass you in Karnataka as well.
2: Yeah, by stabbing in the back to your partner, you managed to get into Tamil Nadu government. Good enough. Keep on doing that. Repeat that in every state. God bless you. आशुतोष जी तो फिर मॉरल हाई ग्राउंड लेने का क्या मतलब है कि अब एक मिनट आशुतोष जी बीच में नहीं फिर मॉरल हाई ग्राउंड लेने का क्या मतलब है नरेंद्र मोदी हमेशा इतने पावरफुल लीडर हैं दे कैन नॉट कंट्रोल द पार्टी लीडर्स इन कर्नाटका यस वी कुड डू दैट बट वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइटली एंड सेट आइडल अबाउट इट वी आर गोइंग टू टेक एक्शंस अबाउट इट दे विल हैव रिपरकशंस बिकॉज वी आर अ स्ट्रांग पार्टी वी डोंट नीड सच लीडर्स हु बैकस्टैब्स अस एंड यू विल सी वी विल टेक एक्शन दैट विल इन द डेज टू कम But what were the actions were taken when Sachin Pilot was charged with treason by none other than Ashok Gehlot? What happened in Chhattisgarh, where two and a half years promises were made to both Singh Dev and this Bhupesh Baghel? Madhya Pradesh, what happened with Jyotiraditya Sindhya and what happened with Kamal Nath? The story is for everyone to see. You find a scapegoat everywhere.
0: Ashutosh.
2: Rahul Gandhi cannot take the credit for winning in Karnataka. I agree, it was Kumar, good management. No doubt about it. But if that management is applied in Jharkhand, you are saying that we didn't have the courage to file our own candidate. We knew we never had numbers. And here was a candidate who supported our ideology in the past when he was in YSR, when he was there as an independent candidate from Jharkhand, he always supported BJP. So we supported Parimal Nathwani. What's wrong in that? That's a strategic move. And if you are in politics, तो रणनीति अच्छल में थोड़ा ही फर्क है यू शुड बी मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड दैट
1: आपको मालूम है कि परिमल नाथवानी वो कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं आप अच्छी तरीके से जानते हैं आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अपने किसी कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करनी चाहिए आप उधार के कैंडिडेट को आप जिताने की कोशिश कर रहे हैं
2: भैया हमने पिछले बार भी जिताया था एक मिनट दस सेकंड दीजिए मुझे
1: जो भारतीय जनता पार्टी
2: अरे 10 सेकंड दीजिए ना सर
1: संघ का कार्यकर्ता जो है अगर उसको जिताने की मेहनत की होते तो पार्टी के लोग ज्यादा खुश होते
2: अरे 10 सेकंड तो दीजिए सुन तो लीजिए भाई साहब सुन लीजिए इसी सीट पे जो हमारे कैंडिडेट अभी रिटायर किए हैं इसी सीट पे इसी कैंडिडेट ने पिछले राज्यसभा चुनाव में हमारे 4 वोट कम थे हमारे ही कैंडिडेट ने जीती थी ये सीट शिबू सोरेन जी गुरु जी को हरा के इसलिए ऐसा नहीं था कि हमने इसकी कैंडिडेट नहीं दिया देर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रैटेजी इन पॉलिटिक्स इट वॉज अ वेरी स्ट्रैटेजिकल मूव परिमल नाथवानी को सिर्फ मैं नहीं जानता हूँ राहुल गांधी जी भी जानते हैं हेमंत सोरेन भी जानते हैं हेमंत सोरेन के विधायकों ने भी उनके लिए वोट किया नहीं तो 30 वोट क्यों देते अगर 56 वोट हैं 28 आने चाहिए तो हेमंत सोरेन के पार्टी को 30 वोट कहां से आ गए ये पहले से प्लान नहीं किया हुआ था उन्होंने मैंने तो आज बधाई हेमंत सोरेन को भी दी है कि बधाई हो आपके कारण दोनों कैंडिडेट राज्यसभा जीते
0: You know, by all means, the BJP should have put up a candidate. उन्होंने किसी और independent को अपना support दे दिया. But Congress ने क्यों उनको support दे दिया? Congress के 6 MLAs ने क्यों support दिया? Sanjay Jha. Okay, only 10 seconds and I want to bring in Professor Saab and Sanjay Jha again. Yes, 10 seconds.
2: I really want to congratulate Ashutosh.
1: बुरा ना माने. ये
2: Ashutosh, क्योंकि वो प्रणव झा की तरह बलि के बकरा नहीं बने.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका मजाक उड़ाते हैं कि कैमरे पर पैसा लेते हुए
2: प्रणव झा की जगह आपको बलि का बकरा नहीं बनाया बधाई हो
1: ये नहीं बीजेपी है मैंने कहा ना जिसको कैमरे पर पैसे लेते हुए पकड़ा जाता प्रधानमंत्री जिसका मजाक उड़ाते हैं वो उनका डार्लिंग हो जाता है ये भारतीय जनता पार्टी की नई पॉलिटिक्स है
0: नवल किशोर यादव लुकिंग वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ ओवर देयर सर यू स्टिल हैवंट आंसर्ड द क्वेश्चन वाज इट योर एमएलएस हु वोटेड अगेंस्ट द कांग्रेस कैंडिडेट एंड दैट इज You know, Tejasvi Yadav goes and wishes Rahul Gandhi today, says, I wish you health and happiness and success. And then all of you keep backstabbing. You had your local leaders who were saying that the Congress doesn't have control over its own MLAs. And बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस गायब हो गई थी बिहार के अंदर उसका बदला आप लोगों ने लिया है. आप मीठा मीठा तो उनके मुंह पे रहते हैं और बगल में छुरी रखते हैं.
3: नहीं पद्मजा जी, हम लोग साफ बोलते हैं और हम लोग कभी छुपा कर और पीछे बैक स्टेप नहीं करते हैं, जैसा कि अजय आलोक जी की पार्टी करती रही है. उनकी पार्टी तो ऐसी है कि जो उनके साथ रहता है उसी को समाप्त कर देता है. याद कीजिए, शिवसेना से लेकर बीजेडी से लेकर वाईएसआर से लेकर अभी जदयू लेटेस्ट है, जिस पार्टी में पहले अजय आलोक जी थे. तो 6 महीना में 4 उप मुख्यमंत्री या 2 मुख्यमंत्री बन जाता है, वो लोग धोखा की बात करते हैं. हम लोग कभी अपने पार्टनरों को आज तक धोखा नहीं दिए हैं और यही बात हमारी पार्टी कह रही है. प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया, अब कैसे कहा जाए कि हमने धोखा नहीं दिया है. हम लोग धोखेबाज तो है नहीं. और जो लोग धोखा दे रहे हैं उस देश को नेतृत्व कर रहे हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं. यही आज का सबसे बड़ा विमर्श का विषय है कि जो अपने पार्टनर को धोखा देते हैं. अकाली दल से लेकर कौन नहीं है उदाहरण, पूरे देश में इतने उदाहरण है. राजनीतिक दल छोड़ दीजिए, व्यक्ति व्यक्ति विशेष छोड़ दीजिए, कितने राजनीतिक दल को धोखा देकर समाप्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी है, ये ऑन रिकॉर्ड है.
0: ठीक है, तो आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहेंगे और आप उनकी लीडरशिप में काम करेंगे? आरजेडी उनकी लीडरशिप में काम करने को तैयार है?
3: देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष एक नेशनल पार्टी है. कई राज्यों में उनकी सरकार है. हम रीजनल पार्टी है और बिहार में मजबूत है और मजबूती से खड़ा है. आइडियोलॉजिकली कांग्रेस के नजदीक है, इसलिए कांग्रेस के साथ है. धर्म निरपेक्षता पर, सामाजिक न्याय पर जिस तरह से मुखर होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खड़ी है, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी जीरो है. वो सबको धोखा देते
0: हैं. आपको लगता है सारी रीजनल पार्टी तैयार है कांग्रेस की लीडरशिप के लिए, राहुल गांधी की लीडरशिप के लिए? क्योंकि जो युबाटा के जो एमपीज गए हैं उन्होंने तो कहा है कि इसी वजह से जा रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस के साथ विलय नहीं करना चाहते थे. दे डोंट वांट टू डू बिजनेस विद कांग्रेस एनीमोर.
4: देखिए, मुझे लगता है कि अब क्षेत्रीय दल के पास कोई विकल्प नहीं बचा. जिस तरीके से ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है, तेजस्वी यादव चुनाव हार जाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी हार जाती है, बीएमसी चुनाव हार गए, विधानसभा आप चुनाव हार गए, तमाम राज्यों के अंदर हार गए चुनाव, अब इनके पास विकल्प नहीं. अगर ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव जीत जाती तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी ये कहती है कि अब मैं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी करूंगी क्योंकि मैं सबसे बड़ी लीडर हूं. अब सबकी मजबूरी, सबकी पार्टियां टूट रही है, कांग्रेस ही अकेली एक राष्ट्रीय पार्टी बची हुई है जिसकी 4 राज्यों में सरकार है. तो मुझे लगता है सबकी मजबूरी है और राहुल गांधी भी मुझे लगता है ये बात पसंद कर रहे होंगे कि अच्छा हुआ ममता बनर्जी हार गई, अच्छा हुआ बिहार में तेजस्वी हारे. अब राहुल गांधी ये कह सकती है कि भाई क्षेत्रीय पार्टी के भरोसे मत रहिए.
0: आप नवल किशोर जी के जख्मों पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं कि राहुल गांधी खुश होंगे? वो सपोर्ट कर रहे हैं, आप फूट डाल रहे हैं.
4: राहुल गांधी तो आज ही अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक बुलाई थी. अब ये पूरे मुसलमानों को कि सारे मुसलमान कांग्रेस को अपने राहुल गांधी को नेता माने, कांग्रेस को अपनी पार्टी माने, राहुल गांधी को नेता माने और सारे मुस्लिम वोट की जो राजनीति है, चाहे वो आरजेडी के पास बिहार में, चाहे बंगाल में ममता बनर्जी के पास है, चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार के पास है, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पास है, सब मुसलमानों को संदेश है कि राहुल गांधी को नेता मानो और कांग्रेस के लिए वोटिंग कीजिए. मुझे लगता है क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी चुनौती.
0: ठीक है, 10 सेकंड आ रही है आपके पास. ये तो आप जानबूझ के जो है उनके बीच में ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. जो नवल किशोर जी सपोर्ट दे रहे हैं राहुल गांधी को, आप उल्टा कह रहे हैं कि सारे मुसलमानों को खींच रहे हैं राहुल गांधी नवल किशोर जी की पार्टी से.
3: ये समीर जी के पीएमए में है इस तरह का बात करना. 1 करोड़ 15 लाख वोट जो बिहार जेडी को मिला है, क्या वो सभी मुसलमान है? इस तरह आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस तरह का कम से कम बात आपको ऑनलाइन नहीं करना चाहिए. जो भारतीय जनता पार्टी है वो खुलेआम सांप्रदायिक पार्टी है. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश में लोग जानते हैं पूरी तरह से सांप्रदायिक पार्टी है. उसके इतिहास में, उसके डीएनए में है. लगातार आप देखिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, भरत तिवारी को मार दिया गया. जो भरत तिवारी एनकाउंटर किया गया, उसने सरेंडर किया उसके बाद भी मुख्यमंत्री खुलेआम करता है. अरे गमछा देखकर अपराधियों को पकड़ो, जो टाइटल देखकर अपराधियों को पकड़ो, इस तरह का खुलेआम जाति और धर्म की बात करता है, वो इनका प्रस्ताव है. आप बताइए किस तरह का राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी? हमारा राजनीति स्पष्ट है. जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसको हम बचाएंगे, जो सेकुलरिज्म है उसको हम बचाएंगे, जो संवैधानिक मूल्य है उसको हम बचाएंगे. उसके हमारे लिए वोट महत्वपूर्ण नहीं है, मत महत्वपूर्ण है, पब्लिक ओपिनियन.
0: ठीक है, तो सारी सेक्युलर पार्टीज अभी भी साथ में ही है अजय आलोक. डिस्पाइट ऑल योर अटेम्प्ट्स, ऑल द सेक्युलर पार्टीज इवेंचुअली विल कम अंडर द कांग्रेस एंड राहुल गांधी अम्ब्रेला.
2: Well, first I would like to say Nawal Kishore bhai very categorically said that ideologically we are very near to Congress. Hum unke saath hain apne vichardhara mein. What an irony The very first child of Mr. Lalu Prasad Yadav was Meesa Bharti. Meesa, the famous draconian law of emergency, जिसके विरोध जिसके तहत लालू जी जेल में गए थे, इसलिए अपनी बेटी का नाम मीसा में रख दिया. और उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि आइडियोलॉजिकली ये लोग कांग्रेस के साथ है. दिस इज द आयरनी ऑफ पॉलिटिक्स. हमारे विरोध में लड़ना है तो कहीं ना कहीं पकड़ना है, तो पकड़ते रहिए उसको. आप सेकुलर कहिए, उसको आप नमाजवादी कहिए, उसको मुस्लिम प्रेम कहिए, उसको मुस्लिम प्रेम कहिए, उसके लिए आप SIR का विरोध कीजिए, उसके लिए आप इलेक्शन कमीशन को गाली दीजिए, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट को गाली दीजिए, CBI को गाली दीजिए, IT को गाली दीजिए, अंत में देश को गाली दीजिए. दिस इज सेक्युलरिज्म. व्हाट अ सेक्युलरिज्म. एंड दैट्स व्हाई पीपल हैव अगेन एंड अगेन रिजेक्टेड देम इन ईच एंड एवरी स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल. और व्हाई वी शुड बी अफ्रेड व्हेन दे वर नॉट टुगेदर, व्हेन दे वर नॉट टुगेदर. यू नो दे आर लाइक क्रैब्स.
3: यू हैव सीन क्रैब्स.
2: One crab climbs up, another crab pulls him down. They are like crabs. So we are not concerned. We are not concerned of crab, and country is also not concerned of crab. The secular crabs, they can keep on contesting between each other. They have nothing to do with the country. Okay. They have nothing to do with the welfare of the country.
3: आपको कुछ आपकी भाषा ही बता रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नए प्रोडक्ट हैं. जब से नागपुर गए हैं आपको सेकुलरिज्म का परिभाषा भी नहीं समझ में आता है. जब जदयू के
2: कह दिया आप क्रैब, सुनने में आपको खराब लग रहा है. केकड़ा कह दिया, एक दूसरे को घिसते रहते हो. नहीं तो क्यों झारखंड हार जाते, क्यों मध्य प्रदेश हार जाते.
3: आप बताइए ना, आप अपनी बता, आप बताइए कि आपकी जो पार्टी है वो क्या थी.
2: बताइए ना, संजय यादव तो बोल ही रहा है आज कि हाँ मैंने हरवा दिया. संजय यादव आप ही के मंत्री है ना, खुलेआम बोल रहे झारखंड में मैंने हरवाया कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने मेरे बेटे को हराया था.
3: आपने तो भागलपुर में आपने
2: लालू जी ने खुद बात की थी ना राहुल गांधी जी से बैठा देने, कांग्रेस ने नहीं बैठाया.
3: इस तरह की बात करना है
2: आपको, किसको नहीं पता है
3: कि आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी का
2: चरित्र. संजय यादव कह रहे हैं,
3: कौन नहीं जानता है.
2: नवल जी संजय यादव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ.
3: आप एकदम नहीं कह रहे,
2: आपके मंत्री हैं.
3: पता चल गया आपको, कहां से पता चल गया ये, कौन सा आपको फोन कर.
2: संजय यादव मंत्री है, बयान दिया है भाई.
3: नहीं नहीं,
2: टीवीओ में चल रहा है, मैंने हरवाया कांग्रेस को क्योंकि मेरे बेटे को हराया था.
3: यही बात.
2: संजय यादव का बयान है नवल जी, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता है.
3: नहीं नहीं, आप अरे बयान देखने के लिए.
2: संजय यादव का बयान है आपके मंत्री का.
0: ओके प्रोफेसर साहब, देयर आर
2: संजय यादव ने बयान दिया, आप किसको डिफेंड कर रहे
0: हैं. यस, योर लीडर्स ऑन रिकॉर्ड हैव सेड दैट द कांग्रेस डिफीटेड अस इन बिहार एंड विच इज वाई दिस वॉज पे बैक टाइम. योर लीडर्स इन झारखंड आर सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड. बट एनीवे, लेट मी ब्रिंग इन संजय झा एंड आशुतोष, बोथ वांट टू कम इन ऑन दिस. BJP is saying we have no fear of the Congress or any such secular front coming together because the likelihood, Sanjay Jha, of a third front now emerging is greater. You have the DMK which has broken away, you've got a section of the Shiv Sena UBT that has broken away, and in all likelihood now the NCP is also going to break away from the MVA.
5: Padmaja, you know, I was expecting the discussion to be on exactly your question, but it became one on political conspiracy and who traded whom at what price. I mean, I really feel I don't want to disrespect your words. So let me focus on what is your theme for the conversation tonight. And I want to make this very categorical that under Narendra Modi as the Prime Minister of India, I was hearing Ajay Alok, you know, the way he started, he said Muslims voted for the Congress in Kerala and blah, blah, blah. Well, aren't Muslims citizens of this country? Aren't Muslims like you and me, Ajay Alok? Or are you going to treat them like second-class citizens? You're coming on a national television show and you are talking in a demeaning manner just because Muslims voted for the Congress. Congress has got to explain it. I mean, which world are we living in? This is the respect they have for constitutional morality. You know, for too long, Padmaja, we are sitting and we are rationalizing and we are trying to justify the conversation around Muslims. This needs to stop. And I will tell you why India is suffering and why Narendra Modi will be voted out sooner rather than later. And mark my words, in any society's history, an economic growth and social harmony, they are directly correlated. They move in the same direction. The reason that Mr. Modi is in panic is because India's GDP is, frankly speaking, laughable. Nobody firstly believes that number. Secondly, for the most populated country in the world, it's an embarrassment. Because if you look at the per capita income, we are, frankly speaking, nowhere. Mm. And if you take away the concentration of economic power, our per capita income is actually embarrassingly low. So here is the point. Mr. Modi is recognized. that he's failed. I think he knows. If you watch Mr. Modi's recent tactics, you know, break the opposition, go after Rahul Gandhi, of course, that is their normal, you know, leitmotif. You know, they keep doing all that. But the truth is, he's aware. This government is aware. They got scared momentarily, at least, of the cockroach Janata Party, because they know they have actually little substance and full spectacle.
0: But Sanjay, and at some point, they should be scared of the Congress, not cockroach. This is a self goal. If you're saying BJP got scared of cockroach Janata Party, that's actually detrimental to your cause. They should be scared of Congress, not cockroaches.
5: No, there's nothing detrimental. I can tell you, when a society pushes back against divisive politics, when the people of a country push back against authoritarianism, every voice, whether it comes from RJD, whether it comes from NCP, whether it comes from Ashutosh, me, whether it comes from the cockroach Janata, comes from anywhere is welcome. Because that's how change happens. And I think the BJP is smelling the coffee. They know there is something in the air that gives them a warning that the people have seen through
0: the
5: air.
0: So if everything is so wrong, why are people still abandoning the opposition? Electorally, the people are abandoning them, and politically, allies are abandoning them. Why is that?
5: I have a short answer for that. You know, Padmaja, can I be very frank? I have said it before and I'll say it again. The Congress can do much better politically. India Alliance needs to be performing at a very different level. I'm not going to deny that. But let's accept one truth. This is not a level playing field. It's like Ajay Alok and me entering a boxing match. He has the gloves. I'm blindfolded. That's not a fair game. And this is where the ED, CBI story, Election Commission story, the whole regulatory capture comes into play. I think the day you have a level playing field, BJP is history.
0: क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस जिस दिन उतनी रूथलेस हो जाएगी जितनी बीजेपी को बताया जा रहा है उस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेटर टूटने वाले हैं महाराष्ट्र के अंदर, शिवसेना के, एनसीपी भी टूट की कगार पे है, समीर जी?
4: नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो पूरा मौका मिलता है. जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस भी चुनाव लड़ती है. जितना अपॉर्चुनिटी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए इतनी कांग्रेस की हो. जनता के बीच कांग्रेस क्या मुद्दे लेकर जाती है महत्व का है ना. जनता किस पर ट्रस्ट करती है वोटिंग के समय? आपको चुनाव लड़े 2014 में, आप चुनाव लड़े 2019 में, लड़े 2024 में, लड़े इतने विधानसभा चुनाव लड़े, क्यों जनता कांग्रेस को ट्रस्ट नहीं कर पा रही है? और कांग्रेस में जीते हुए विधायक कांग्रेस को क्यों ट्रस्ट नहीं कर पा रहे? आपके एमएलए जीतते हैं वो टूट कर चले जाते हैं, ज्योतिराज सिंधिया जीतते हैं वो छोड़ कर चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ में आपके एमएलए आपके साथ रहना नहीं चाहते, राजस्थान में सचिन पायलट अशोक गहलोत आपस में लड़ते हैं,
0: कोई सलाम करता है ना? जिस दिन कांग्रेस की सरकार होगी उस दिन बीजेपी के लोग टूट जाएंगे?
4: नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो कभी लंबे समय सत्ता भी नहीं रही, कभी भारतीय जनता पार्टी के टूटे हैं क्या? मुझे तो कभी याद नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी टूट हुई. जो तोड़ के गए वो लौट कर आए, येदियुरप्पा पार्टी छोड़कर जाते हैं लौट कर आते, उमा भारती पार्टी छोड़कर जाती वापस लौट कर आती है. कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए किसी नेता ने अपने अस्तित्व बनाया क्या? सब लौटकर भारतीय जनता पार्टी में आते. कांग्रेस में ऐसा क्यों है कि उनके एमएलए उनके साथ रहना नहीं चाहते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ रहना नहीं चाहते? मुझे लगता है कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए राहुल गांधी को इस बात को लेकर कि पार्टी के अंदर एमएलए और एमपीएस में ऐसा क्या है कि डर कर वो पार्टी छोड़कर उनकी जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भविष्य उनका वहां सुरक्षित नहीं है. भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जिताने की गारंटी अमित शाह नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी के अंदर वो गारंटी नहीं कि वो आपको चुनाव जिता देंगे. जिस दिन राहुल गांधी का यह कद बन जाएगा कि उनके नाम पर वोट मिलने लगेंगे, मुझे लग रहा है कांग्रेस और सांसद भी पार्टी छोड़ना छोड़ देंगे.
0: ऑलराइट, आई एम गोना लीव इट एट दैट बिकॉज़ रिमेंबर पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड जस्ट टू पिक्चर्स इन कॉन्ट्रास्ट व्हिच वी सॉ जस्ट यस्टरडे. One, an embarrassment of the Congress in Jharkhand, and the other, the same Congress in Karnataka manages to embarrass the BJP. The only difference is how the political players strategized in both of those states. Leave it at that, and maybe on that approach, a lot will hinge over the next few years. Thanks very much, all gentlemen, for having joined me on this discussion. And finally, again, from all of us, wishing Rahul Gandhi a long, happy, and successful life. Thanks very much.

0: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना,
1: बाल्टी,
0: और मानसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना। पसीना मत बहाओ, बर्जर रूफ कूलेंट सील लगाओ, ये छत के क्रैक्स को करे सील और आपको दे ठंडा फील। बर्जर रूफ कूलेंट सील।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थर मसाला।
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: benefited from it. For example, people who have who've been deceased are also, the funds have been transferred to their accounts. Now, the government is saying that they're going to review, especially the Gruha Lakshmi and the Gruha Jyoti, in terms of who are the beneficiaries, and then take action based on that. Now, this is going to happen in the weeks to come. But the BJP has already alleged foul play, and they're saying that this is for the Congress government to trim the guarantees and right. also to reduce the amount of funding that will be going out to the state.
1: Absolutely. This will pave the way for more political war of words in the state, with BJP upping the ante against Congress. Thank you so much, Deepak, for those details. Shifting our focus now, a birthday celebration for Congress MP Rahul Gandhi snowballed into a political controversy. In Varanasi, youth Congress workers performed a Durgabhishek on a poster depicting Rahul Gandhi in a Lord Parshuram-like avatar, holding an axe in one hand and the constitution on the other. The BJP hit back sharply, calling the comparison an insult to Bhagwan Parshuram and accusing Congress of practicing election time Hindutva. Sample the reactions.
2: दिख रहा है तस्वीर में कि राहुल गांधी को परशुराम अवतार में दिखाया गया है और फूल और दूध चढ़ाकर उनका जन्मदिन मनाया है पार्टी के कार्यकर्ताओं ने. बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की तुलना परशुराम भगवान से की गई है, ये अपमान है, परशुराम भगवान का सनातन का अपमान है. क्या आपका जवाब?
3: देखिए, जो भी लोग वहाँ पर थे वो स्वयं सब ब्राह्मण लोग थे. जिन लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था उनकी भावनाएँ थी, वो स्वयं परशुराम के वंशज अपने आप को मानते हैं. मुझे नहीं लगता कहीं पर भी उसमें कोई चीज़ गलत है, उनकी भावनाएँ हैं. अब बात आती है दूसरा विषय सनातन वाला. बीजेपी भी सनातन की बात करेगी? अरे, प्रभु राम का चंदा चोरी करके खा गए तुम लोग, गाय को काटने की परमिशन देते हो, शंकराचार्य की पालकी उठा के फेंक देते हो, शंकराचार्य के ऊपर पॉक्सो जैसा केस लगवाते हो अपने प्रशासन से, तुम लोग भी बात करोगे? भाजपा ने जितना सनातन का नुकसान किया है आज तक किसी ने नहीं किया. और नया नया तो जो प्रकरण है, अभी तक तो चंदा चोर थे, अब तो चढ़ावा चोर हो गए. अरे, चढ़ावा और प्रभु राम के हीरे जवाहरात के सब आभूषण खा गए आरएसएस और भाजपा वाले, ये भी सनातन की बात करेंगे? भाजपाइयों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रभु राम के आभूषण चोरी करने की? भाजपाइयों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाय को काटने की परमिशन देने की? तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी.
4: मैं जन्मदिन का बधाई देता हूँ, लेकिन भगवान परशुराम को गाली नहीं दे सकता. मैं भगवान परशुराम की तुलना उस आदमी से दिया जाए जिनका अभी तक देश जानता नहीं वो किस धर्म को मानते हैं और क्या करते हैं, किसने दर्शाया मैं नहीं जानता.
5: Congress supporters can dream of making Rahul Gandhi the Prime Minister on his birthday, but the truth is, just 24 hours back, their own alliance partner JMM exposed the Congress party, where the alliance partners of the Congress did not vote for the Congress Rajya Sabha candidate in Jharkhand. The 2029 elections, the Hindus of India, the Sanatanis of India, the people of India have made up their mind to support Prime Minister Narendra Modi. They've also seen how on Rahul Gandhi's birthday, the Congress supporters have at one point ensured that they have insulted Bhagwan Parshuram. At the same time, they've said that 365 days, out of 365 days, one day the Congress party will remember Hindus, 364 days they'll do appeasement politics.
6: Bhagwan Parshuram ki barabari karna Rahul Gandhi ji ko kafi mehenga padega. ये हो ही नहीं सकता. जो सनातन विरोधी है, जो वो कैसे भगवान परशुराम की बराबरी के बारे में सोच भी सकता है? राहुल गांधी जी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके वंशजों ने ही गोपाष्टमी के दिन गौरक्षकों पर, संतों पर लाठियां और गोलियां चलवा करके नई दिल्ली को, संसद भवन के आसपास को खून से रंगने का काम किया था.
7: जिस किस्म से उसने विपक्षी नेतृत्व किए हैं, जिस किस्म से उन्होंने इतना सख्त रहा, रेजोल्यूट, रेजिलियंट, इसी किस्म से आगे बढ़ाना है. अब देखो, 10 साल के बाद हमें केरला में एक जीत हुई, अगले साल अगर कुछ सालों के बाद पंजाब में जीत हुई, अगर उत्तराखंड में, अगर तो बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं हमारे विपक्ष की किस्मत में. अब मेरे ख्याल में उनका जो डिटर्मिनेशन है, उनका जो कन्विक्शन है, ये सब लग के आगे जाना है हमारे पार्टी को. इसलिए

0: कांग्रेस के हर अंग आए हैं, बहुत दूर से भी आए हैं, उनको बिल्कुल उनको विश करने के लिए समर्थन देने।
1: पूरे देश में खासकर युवा आज उनको देखते हैं एक ऐसे इंसान की तरह जो उनकी उम्मीदों को बढ़ाना चाहता है। जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, एग्जामिनेशन प्रणाली है, उस पर लोगों का विश्वास टूट रहा है और एक बहुत असमंजस लोगों के जहन में है। उसका मुकाबला करने के लिए, बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए, न्याय दिलाने के लिए वो काम कर रहे हैं और आज के दिन मेरी शुभकामनाएं उनको, और मुझे लगता है उनका उनकी जो मेहनत है ये जरूर रंग लाएगी।
2: Slipping into a very short break, don't go anywhere, keep watching NDTV for more news and updates.

0: सामने खड़ा है। आज मी बघतोय काल परवापासून कुछ कुत्ते रोज भोक रहे हैं, पण मी तुम्हाला सांगतो कुत्ते झुंड में आके भोकते हैं, शेर अकेला आता है, कुत्ते भोकते रहते हैं, टाइगर शिकार करता है, और कुत्ते भोकते रहते हैं और टाइगर दहाड़ता है। ये शिवसेना है, ही शिवसेना है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या।
1: आणि काय उद्धव ठाकरे कोणाला भेटत नाहीत, बरं उद्धवजी नाही तर आदित्य ठाकरे फिरले पाहिजेत। मम्मी जर कोणाला भेटत नव्हतं तर गदड्या तू निवडून कसा आलास? लोकसभेच्या वेळेला सुद्धा तुमच्या सगळ्यांच्या सोबत प्रत्येक लोकसभेमध्ये किमान 6 ते 10 सभा मी तेव्हा घेतल्या होत्या, 6 ते 10 तेव्हाही निवडून आलेले आहेत। पण जर का मी असं गर्वाने म्हटलं की मी तुला तिकीट दिलं, मी तुला निवडून आणलं, मी तुला मंत्री केलं, मी तुला आमदार केलं, मी तुला विधानसभेतल्या मंत्रिपदाची तिथली खुर्ची दाखवली, तर हा माझा गर्व असेल। पण मी गर्वाने नाही बोलू शकत, कारण मला माहितीये की उद्धव ठाकरेला किंमत नाही, उद्धव बाळासाहेब ठाकरेला किंमत आहे। आणि याचं भान मला आहे। आपण जी ज्या वेळेला सगळ्या महिलांना माहिती आहे, आता शहरामध्ये तर काही जंगलतोड बेसुमार चाललेली आहे शहरामध्ये।
2: And my colleague Saurabh Gupta is with me. Saurabh, you have been tracking this war of words. We saw earlier also when real Shiv Sena fight was on. And now again, when rebels are giving a tough time to Uddhav Thackeray, he's back to his threats. But Shinde has said in a very clear wording that Operation Tiger is so on between the two factions.
3: Absolutely. The rhetoric just got louder between the two Senas. And of course, today is a day when both the Senas, the faction led by Uddhav Thackeray and the faction led by Eknath Shinde, both held separate events to celebrate what is known as the Foundation Day of the Shiv Sena. It's the 60th Foundation Day. Now, in what Uddhav Thackeray said was what his point of view has been, that these are people whom he got elected, but they've stabbed him in the back, calling them traitors for leaving the party, leaving him. Eknath Shinde, however, said that he hunts alone, he's the tiger. The tiger is relevant because the tiger is also associated with the Shiv Sena. And using the very filmy line, said that picture abhi baki hai, which means that there could be more, defections and more people who could be actually looking at more defections in the next few days. And that includes the BMC, the all-important BMC, where I spoke today to the group leader of the Shiv Sena, Amay Ghole, who said that corporators also may be rebelling. So we haven't seen the end of this yet. The rhetoric is only going to get higher. Uddhav Thackeray calling those defectors traitors, calling them gaddar, and Eknath Shinde saying there's more to come.
2: Absolutely. The war of words is only getting interesting with filmy dialogues and more to see whether more defection will take place. Thank you so much, Saurabh, for joining us. Shifting our focus now to TMC, where the action shifted to New Delhi. A high-level delegation from the Trinamool Congress led by Party General Secretary Abhishek Banerjee met with Lok Sabha Speaker Om Birla to formally demand the disqualification of 20 MPs from TMC in a major political confrontation. Now, the TMC delegation submitted 20 different petitions aimed at parliamentarians who had recently defected to the Nationalist Citizens Party of India. The party is advocating for swift constitutional action against rebels for changing political allegiance. Meanwhile, as per sources, Lok Sabha Speaker Om Birla will take final call on plea of rebels who are seeking merger with NCPI and a separate seating arrangement inside the parliament before the monsoon session. But listen into what Abhishek Banerjee had to say after his meeting with Om Birla.
4: अध्यक्ष जी को हमने ये अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इस पे आप कार्रवाई करें। दोनों पक्ष को सुने, क्योंकि आप अगर संविधान के हिसाब से जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो साफ इनके खिलाफ जाता है। क्योंकि आइदर आप कह रहे हैं कि भाई मैं दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में 2/3 बन के रहूंगा, मैं दूसरा पार्टी का मेंबरशिप बन के उस पार्टी में रहूंगा तभी आपका मेंबरशिप चला जाएगा। ये साफ मेंशन किया है संविधान में, या तो संविधान गलत है या फिर आप गलत है, दोनों में कोई एक गलत तो होगा।
2: Breaking news coming in now from down south, where Karnataka government is mulling on rejigging the guarantees that were promised during the election of Karnataka. The Congress party and the DKS Sarkara is moving towards tightening the verification process for new beneficiaries and introducing new checks for the beneficiaries who will be getting the Karnataka Congress Sarkara's guarantees. Now, this is being done after DKS has taken charge as the new chief minister. The tracking and account scrutiny is likely to become central to implementation of welfare programs. My colleague Deepak Bopanna is with me for more. Deepak, tell us why this sudden change?
5: Well, Aditi, as far as the guarantees are concerned, as far as the BJP is concerned, they've always, maintained that the guarantees have been a burden on the exchequer. They've always also maintained that the, Congress government has been looking to reduce, the guarantees which have been implemented. Now, after the new chief minister, Mr. D.K. Shukumar, has taken over, there has been once again a rethink on the guarantees in terms of who are the beneficiaries. Here, the new chief minister believes, or rather the data that has been given to him has suggested there are many beneficiaries, especially when it comes to the Gruha Lakshmi scheme, that many of them who are not actually eligible for the scheme have been benefited from it. For example, people who have deceased are also, the funds have been transferred to their account. Now, the government is saying that they're going to review, especially the Gruha Lakshmi and the Gruha Jyoti, in terms of who are the beneficiaries, and then take action based on that. Now, this is going to happen in the weeks to come. But the BJP has already alleged foul play, and they're saying that this is for the Congress government to trim the guarantees and right, also to reduce the amount of funding that will be going out to the state.
2: Absolutely. This will pave the way for more political war of words in the state, with BJP upping the ante against Congress. Thank you so much, Deepak, for those details. Shifting our focus now, a birthday celebration for Congress MP Rahul Gandhi snowballed into a political controversy. In Varanasi, Youth Congress workers performed a Durga Abhishek on a poster depicting Rahul Gandhi in a Lord Parshuram-like avatar, holding an axe in one hand and the constitution on the other. The BJP hit back sharply, calling the comparison an insult to Bhagwan Parshuram and accusing Congress of practicing election time Hindutva. Sample the reactions.
6: दिख रहा है तस्वीर में कि राहुल गांधी को परशुराम अवतार में दिखाया गया है और फूल और दूध चढ़ाकर उनका जन्मदिन मनाया है पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की तुलना परशुराम भगवान से की गई है, ये अपमान है, परशुराम भगवान का सनातन का अपमान है। क्या आपका जवाब?
7: देखिए, जो भी लोग वहाँ पर थे वो स्वयं सब ब्राह्मण लोग थे, जिन लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था उनकी भावनाएँ थी, वो स्वयं परशुराम के वंशज अपने आप को मानते हैं। मुझे नहीं लगता कहीं पर भी उसमें कोई चीज़ गलत है, उनकी भावनाएँ हैं। अब बात आती है दूसरा विषय सनातन वाला, बीजेपी भी सनातन की बात करेगी? अरे प्रभु राम का चंदा चोरी करके खा गए तुम लोग, गाय को काटने की परमिशन देते हो, शंकराचार्य की पालकी उठा के फेंक देते हो, शंकराचार्य के ऊपर पॉक्सो जैसा केस लगवाते हो अपने प्रशासन से, तुम लोग भी बात करोगे? भाजपा ने जितना सनातन का नुकसान किया है आज तक किसी ने नहीं किया, और नया नया तो जो प्रकरण है, अभी तक तो चंदा चोर थे, अब तो चढ़ावा चोर हो गए। अरे चढ़ावा और प्रभु राम के हीरे जवाहरात के सब आभूषण खा गए आरएसएस और भाजपा वाले, ये भी सनातन की बात करेंगे? भाजपाइयों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रभु राम के आभूषण चोरी करने की? भाजपाइयों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाय को काटने की परमिशन देने की? तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी।
8: मैं जन्मदिन का बधाई देता हूँ, लेकिन भगवान परशुराम को गाली नहीं दे सकता मैं। भगवान परशुराम की तुलना उस आदमी से दिया जाए जिनका अभी तक देश जानता नहीं वो किस धर्म को मानते हैं और क्या करते हैं, किसने दर्शाया मैं नहीं जानता।
9: कांग्रेस सपोर्टर्स कैन ड्रीम ऑफ मेकिंग राहुल गांधी द प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज बर्थडे, बट द ट्रूथ इज जस्ट 24 आवर्स बैक देयर ओन अलायंस पार्टनर जेएमएम एक्सपोज्ड द कांग्रेस पार्टी वेयर द अलायंस पार्टनर्स ऑफ द कांग्रेस डिड नॉट वोट फॉर द कांग्रेस राज्यसभा कैंडिडेट इन झारखंड। The 2029 elections, the Hindus of India, the Sanatanis of India, the people of India have made up their mind to support Prime Minister Narendra Modi. They've also seen how on Rahul Gandhi's birthday, the Congress supporters have at one point ensured that they have insulted Bhagwan Parshuram. At the same time, they've said that 365 days, out of 365 days, one day the Congress party will remember Hindus, 364 days they'll do appeasement politics.
10: भगवान परशुराम की बराबरी करना राहुल गांधी जी को काफी महंगा पड़ेगा, ये हो ही नहीं सकता। जो सनातन विरोधी है जो, वो कैसे भगवान परशुराम की बराबरी के बारे में सोच भी सकता है? राहुल गांधी जी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके वंशजों ने ही गोपाष्टमी के दिन गौरक्षकों पर, संतों पर लाठियां और गोलियां चलवा करके नई दिल्ली को, संसद भवन के आसपास को खून से रंगने का काम किया था।
11: जिस किस्म से उसने विपक्षी नेतृत्व किए हैं, जिस किस्म से उन्होंने इतना सख्त रहा, रेजोल्यूट, रेजिलियंट, इसी किस्म से आगे बढ़ाना है। अब देखो, 10 साल के बाद हमें केरला में एक जीत हुई, अगले साल अगर कुछ सालों के बाद पंजाब में जीत हुई, अगर उत्तराखंड में, अगर तो बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं हमारे विपक्ष की किस्मत में। अब मेरे ख्याल में उनका जो डिटर्मिनेशन है, उनका जो कन्विक्शन है, ये सब लग के आगे जाना है हमारे पार्टी को। इसलिए कांग्रेस के हर रंग आए हैं, बहुत दूर से भी आए हैं, उनको बिल्कुल उनको विश करने के लिए, समर्थन देने।
12: पूरे देश में खासकर युवा आज उनको देखते हैं एक ऐसे इंसान की तरह जो उनकी उम्मीदों को बढ़ाना चाहता है। जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, एग्जामिनेशन प्रणाली है, उस पर लोगों का विश्वास टूट रहा है और एक बहुत असमंजस लोगों के जहन में है। उसका मुकाबला करने के लिए, बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए, न्याय दिलाने के लिए वो काम कर रहे हैं और आज के दिन मेरी शुभकामनाएं उनको, और मुझे लगता है उनका, उनकी जो मेहनत है ये जरूर रंग लाएगी।
2: स्लिपिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग एनडीटीवी फॉर मोर न्यूज एंड अपडेट्स।

0: कह रहा है कि भाई मैं दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में 2/3 बन के रहूंगा, मैं दूसरा पार्टी का मेंबरशिप बन के उस पार्टी में रहूंगा, तभी आपका मेंबरशिप चला जाएगा। ये साफ मेंशन किया है संविधान में। या तो संविधान गलत है या फिर आप गलत है, दोनों में कोई एक गलत तो होगा।
1: Breaking news coming in now from down south, where Karnataka government is mulling on rejigging the guarantees that were promised during the election of Karnataka. The Congress party and the DKS Sarkara is moving towards tightening the verification process for new beneficiaries and introducing new checks for the beneficiaries who will be getting the Karnataka Congress Sarkara's guarantees. Now, this is being done after DKS has taken charge as the new chief minister. The tracking and account scrutiny is likely to become central to implementation of welfare programs. My colleague Deepak Bopanna is with me for more. Deepak, tell us why this sudden change?
2: Well, Aditi, as far as the guarantees are concerned, as far as the BJP is concerned, they've always, maintained that the guarantees have been a burden on the exchequer. They've always also maintained that the, Congress government has been looking to reduce, the guarantees which have been implemented. Now, after the new chief minister, Mr. D.K. Shivakumar, has taken over, there has been once again a rethink on the guarantees in terms of who are the beneficiaries. Here, the new chief minister believes, or rather the data that has been given to him has suggested there are many beneficiaries, especially when it comes to the Gruha Lakshmi scheme, that, many of them who are not actually eligible for the scheme have been, benefited from it. For example, people who have, who've been deceased are also, the funds have been transferred to their account. Now, the government is saying that they're going to review, especially the Gruha Lakshmi and the Gruha Jyoti, in terms of who are the beneficiaries, and then take action based on that. Now, this is going to happen in the weeks to come. But the BJP has already alleged foul play, and they're saying that this is for the Congress government to trim the guarantees and right. also to reduce the amount of funding that will be going out to the state.
1: Absolutely. This will pave the way for more political war of words in the state, with BJP upping the ante against Congress. Thank you so much, Deepak, for those details. Shifting our focus now, a birthday celebration for Congress MP Rahul Gandhi snowballed into a political controversy. In Varanasi, youth Congress workers performed a Durgabhishek on a poster depicting Rahul Gandhi in a Lord Parshuram-like avatar, holding an axe in one hand and the constitution on the other. The BJP hit back sharply, calling the comparison an insult to Bhagwan Parshuram and accusing Congress of practicing election time Hindutva. Sample the reactions.
3: दिख रहा है तस्वीर में कि राहुल गांधी को परशुराम अवतार में दिखाया गया है और फूल और दूध चढ़ाकर उनका जन्मदिन मनाया है पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की तुलना परशुराम भगवान से की गई है, यह अपमान है, परशुराम भगवान का सनातन का अपमान है। क्या आपका जवाब?
4: देखिए, जो भी लोग वहाँ पर थे वो स्वयं सब ब्राह्मण लोग थे, जिन लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था उनकी भावनाएँ थी, वो स्वयं परशुराम के वंशज अपने आप को मानते हैं। मुझे नहीं लगता कहीं पर भी उसमें कोई चीज़ गलत है, उनकी भावनाएँ हैं। अब बात आती है दूसरा विषय सनातन वाला, बीजेपी भी सनातन की बात करेगी? अरे प्रभु राम का चंदा चोरी करके खा गए तुम लोग, गाय को काटने की परमिशन देते हो, शंकराचार्य की पालकी उठा के फेंक देते हो, शंकराचार्य के ऊपर पॉक्सो जैसा केस लगवाते हो अपने प्रशासन से, तुम लोग भी बात करोगे? भाजपा ने जितना सनातन का नुकसान किया है आज तक किसी ने नहीं किया है। और नया नया तो जो प्रकरण है, अभी तक तो चंदा चोर थे, अब तो चढ़ावा चोर हो गए। अरे चढ़ावा और प्रभु राम के हीरे जवाहरात के सब आभूषण खा गए आरएसएस और भाजपा वाले, ये भी सनातन की बात करेंगे? भाजपाइयों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रभु राम के आभूषण चोरी करने की? भाजपाइयों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाय को काटने की परमिशन देने की? तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी।
5: मैं जन्मदिन का बधाई देता हूँ, लेकिन भगवान परशुराम को गाली नहीं दे सकता मैं। भगवान परशुराम की तुलना उस आदमी से दिया जाए जिनका अभी तक देश जानता नहीं वो किस धर्म को मानते हैं और क्या करते हैं, किसने दर्शाया मैं नहीं जानता।
6: Congress supporters can dream of making Rahul Gandhi the Prime Minister on his birthday, but the truth is, just 24 hours back, their own alliance partner JMM exposed the Congress party, where the alliance partners of the Congress did not vote for the Congress Rajya Sabha candidate in Jharkhand. The 2029 elections, the Hindus of India, the Sanatanis of India, the people of India have made up their mind to support Prime Minister Narendra Modi. They've also seen how on Rahul Gandhi's birthday, the Congress supporters have at one point ensured that they have insulted Bhagwan Parshuram. At the same time, they've said that 365 days, out of 365 days, one day the Congress party will remember Hindus, 364 days they'll do appeasement politics.
7: Bhagwan Parshuram ki barabari karna Rahul Gandhi ji ko kafi mehenga padega. ये हो ही नहीं सकता. जो सनातन विरोधी है, जो वो कैसे भगवान परशुराम की बराबरी के बारे में सोच भी सकता है. राहुल गांधी जी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके वंशजों ने ही गोपाष्टमी के दिन गौरक्षकों पर, संतों पर लाठियां और गोलियां चलवा करके नई दिल्ली को, संसद भवन के आसपास को खून से रंगने का काम किया था.
8: जिस किस्म से उसने विपक्षी नेतृत्व किए हैं, जिस किस्म से उन्होंने इतना सख्त रहा, रेजोल्यूट, रेजिलियंट, इसी किस्म से आगे बढ़ाना है. अब देखो, 10 साल के बाद हमें केरला में एक जीत हुई, अगले साल अगर कुछ सालों के बाद पंजाब में जीत हुई, अगर उत्तराखंड में, अगर तो बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं हमारे विपक्ष की किस्मत में. अब मेरे ख्याल में उनका जो डिटर्मिनेशन है, उनका जो कन्विक्शन है, ये सब लग के आगे जाना है हमारे पार्टी को. इसलिए कांग्रेस के हर रंग आए हैं, बहुत दूर से भी आए हैं, उनको बिल्कुल उनको विश करने के लिए, समर्थन देने.
9: पूरे देश में खासकर युवा आज उनको देखते हैं एक ऐसे इंसान की तरह जो उनकी उम्मीदों को बढ़ाना चाहता है. जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, एग्जामिनेशन प्रणाली है, उस पर लोगों का विश्वास टूट रहा है और एक बहुत असमंजस लोगों के जहन में है. उसका मुकाबला करने के लिए, बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए, न्याय दिलाने के लिए वो काम कर रहे हैं. और आज के दिन मेरी शुभकामनाएं उनको, और मुझे लगता है उनका, उनकी जो मेहनत है ये जरूर रंग लाएगी.
1: Slipping into a very short break, don't go anywhere, keep watching NDTV for more news and updates.

0: आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और हम सब उनको बधाई देते हैं, बहुत शुभकामना देते हैं। वो अपने संघर्ष में कामयाब रहेंगे और विशेष रूप से देश का नौजवान आज उनके प्रति देख रहा है, उम्मीद से देख रहा है। और वर्तमान व्यवस्था को जो एक नकारात्मक दिशा मिल रही है उसके खिलाफ उन्होंने अपनी बात को उलंद किया है।
1: I've come to wish him and I've come to really wish him continued resolution, resilience, determination and strength in leading the fight for a more inclusive democracy in our country. What we need to see is a strong opposition, and with Rahul Gandhi's leadership, that

0: देखिए पद्मजा जी, धोखा देना तो हमारे पार्टी के और नेता के इतिहास में नहीं रहा। धोखा की जो उपज है वो भारतीय जनता पार्टी है। जनता पार्टी में ज्वाइन किया 77 में और बीजेपी 80 में आ गया। पहला धोखा वहां दिया, जनता दल में गया, जनता दल और की सरकार बनी, उसमें सरकार में रहे, मंडल कमीशन लागू हुआ, उन्होंने सरकार तोड़ दिया। दूसरा धोखा दिया हिंदुत्व को लेकर है। धोखा देना तो उनके इतिहास में है। जहां तक झारखंड का सबसे चौंकाने वाला खबर ये होना चाहिए कि भाजपा ने तो पूरा का पूरा अपना एमएलए बेच दिया। इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है।
1: अरे सर,
0: हमारे दल के
1: आपके
0: तो
1: एमएलए ने
0: हमारे दल
1: किसको वोट
0: के
1: दिया और ये 6 एमएलए
0: हमारे
1: किसके थे?
0: नहीं हमारे एमएलए ने तो महागठबंधन कैंडिडेट को वोट दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी को आरजेडी के कोई भी लोग वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो
1: तो
0: भारत
1: फिर
0: को
1: आप कह
0: आगे
1: रहे हैं कि
0: बढ़ाने के लिए
1: कांग्रेस के
0: नहीं।
1: खुद के लोगों ने राहुल गांधी को धोखा दिया?
0: अब ये कांग्रेस का काम है पता करना कि उनके लोगों ने कहाँ वोट दिया, लेकिन हमारे दल के तो कोई भी विधायक
1: एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द
0: कोई
1: की
0: भी
1: इशू। वी कीप टॉकिंग अबाउट राहुल गांधी बीइंग द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर ओन पार्टी आशुतोष जी, देन हाउ आर यू गोइंग टू एवर रीच टू द टॉप?
0: पद्मजा जी, दो
1: इफ
0: एक मिनट तो
1: ऑर्गेनाइजेशनली यू कांट इवन फिगर आउट योर एमएलए एट द लेवल ऑफ झारखंड, देन हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज टू गेट टू 7 लोक कल्याण मार्ग?
2: See, Padmaja, that if what applies to Rahul Gandhi and what applies to the Congress, that equally applies to the BJP, Narendra Modi or Amit Shah in Karnataka. You know, the Legislative Council election happened. BJP candidate was
1: 100%,
2: supposed to get 30 votes.
1: 100%.
2: In
1: But the
2: that,
1: problem is with the
2: 27.
1: Congress or India, it happens again and again. It happened with them in Bihar. It's happening them in Jharkhand. It happened with them in Madhya Pradesh.
3: Karnataka mein ye hua hai ki Bharatiya
2: Janata. Let me complete.
1: Let me complete. I'm coming to you. Yes.
2: Let me complete. Lingraj Patil was a BJP candidate. He got only 27 votes, supposed to get 30 votes. Then there is another gentleman whose name is Raghu Kautilya. He got 29 votes. So the BJP MLAs and others also cross-voted. And the Congress successfully managed to win 5 legislative council votes. Now, if Narendra Modi and Amit Shah can't control their own leaders in Karnataka, supposed to be so powerful, having government in 14 states, in 22 NDA governments, and extremely powerful, then what are you talking about the outcome?
1: क्या फर्क है?
2: शुड बी डिस्कस
1: क्या फर्क है राहुल गांधी की वीकनेस क्यों डिस्कस की जा रही है?
3: कल अभी आशुतोष जी कर रहे थे कर्नाटक एमएलसी इलेक्शन का कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की, उसका असर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहां के लीडर ऑफ अपोजिशन कर्नाटका के स्टेट प्रेसिडेंट को दिल्ली बुला लिया है, फोन पर बात की और दिल्ली बुला लिया,
1: और
3: क्या बिल्कुल सबको दिल्ली बुला लिया। क्या राहुल गांधी ने झारखंड की हार को लेकर इस तरह से कोई बात की? क्या मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का जब पर्चा खारिज होता है तब राहुल गांधी ने इस तरह से एक्टिविटी की? मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को जब झारखंड का चुनाव देखना था वो कोटा चले गए, अपने कोटे की सीट को बचाना था तो वो कोटा चले गए। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को झारखंड में देखना था कि जब परिमल नाथवानी वहाँ उम्मीदवार है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है तो वो सुनिश्चित करते, हेमंत सोरेन से बात करते, झारखंड में आरजेडी से बात करते और अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करते।
1: इनफैक्ट सम पीपल सेड दैट भूपेश बघेल हु वाज सेंट देयर टू बी एन ऑब्जर्वर डिड ओनली 2 मीटिंग्स, ही वेंट एंड मेट हेमंत सोरेन ओनली वंस।
2: सी राहुल गांधी की तो छोड़ दीजिए ना भाई, अमित
1: तो छोड़
2: कह
1: सकते हैं, आज पूरा डिबेट ही उनके ऊपर है, उनका बर्थडे है।
2: नो, लेट मी कंप्लीट जो समीर बात कह रहे हैं भाई, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे पावरफुल लीडर्स के होने के बावजूद भी कर्नाटका के अंदर बीजेपी के लोग क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, क्या आज की सबसे बड़ी खबर है या नहीं? फॉरगेट अबाउट राहुल गांधी, राहुल गांधी इज वीक, कांग्रेस इज वीक, एनडीए द होल
1: आंसर दैट अजय आलोक, यू थिंक यू आर इनविंसिबल, लुक हाउ यू आर ह्यूमिलिएटेड इन कर्नाटका, डीके शिवकुमार ह्यूमिलिएटेड यू इन कर्नाटका।
2: पार्ट
1: ऑफ द गवर्नमेंट इन तमिलनाडु, दे नाउ हैव गवर्नमेंट्स इन कर्नाटका, इन हिमाचल प्रदेश, एंड दे मैनेज टू एम्बैरेस यू इन कर्नाटका एज वेल।
4: Yeah, by stabbing in the back to your partner, you manage to get into Tamil Nadu government. Good enough. Keep on doing that. Repeat that in every state.
2: Ajay,
4: God bless you.
2: Ashutosh
4: ji, तो फिर moral high ground लेने का क्या मतलब है कि अब एक मिनट Ashutosh ji, बीच में नहीं। फिर moral high ground लेने का क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी अमित शाह इतने powerful leader हैं, they cannot control their party leaders in Karnataka. Yes, we couldn't do that, but we are not going to take it lightly and sit idle about it. We are going to take actions about it. They will have repercussions.

0: because we are a strong party. We don't need such leaders who backstabs us. And you'll see, we'll take action that will in the days to come. But what were the actions were taken when Sachin Pilot was charged with treason by none other than Ashok Gehlot? What happened in Chhattisgarh, where two and a half years promises were made to both Singh Dev and this Bhupesh Baghel? Madhya Pradesh, what happened with Jyotiraditya Sindhya and what happened with Kamal Nath? If the story is for everyone to see. You find scapegoat everywhere.
1: Ashutosh.
0: Rahul Gandhi cannot take the credit for winning in Karnataka. I agree it was Kumar, good management. But if that management is applied in Jharkhand, you are saying that we didn't have the courage to file our own candidate. We knew we never had numbers. And here was a candidate who supported our ideology in the past when he was in YSR. When he was there in the as an independent candidate from Jharkhand, he always supported BJP. So we supported Parimal Nath Wani. What's wrong in that? That's a strategic move. And if you are in politics, to ranniti achhal, mein thoda hi tapar. You should be mature enough to understand that.
2: आपको मालूम है कि परिमल नाथ वानी वो कौन है? मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अपने किसी कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करनी चाहिए। आप उधार के कैंडिडेट को आप जिताने की कोशिश कर रहे हैं।
0: भैया मैं पिछले बार भी जिताया था। एक मिनट दीजिए मुझे 10 सेकंड दीजिए मुझे 40 साल बस्ता उठाया है
2: जो भारतीय जनता पार्टी
0: अरे 10 सेकंड दीजिए ना सर
2: संघ का कार्यकर्ता जो है अगर उसको जिताने की मेहनत की होते तो पार्टी के लोग ज्यादा खुश होते
0: अरे 10 सेकंड तो दीजिए सुन तो लीजिए भाई साहब सुन लीजिए इसी सीट पे जो हमारे कैंडिडेट अभी रिटायर किए हैं इसी सीट पे इन्होंने इसी कैंडिडेट ने पिछले राज्यसभा चुनाव में हमारे 4 वोट कम थे हमारे ही कैंडिडेट ने जीती थी ये सीट शिबू सोरेन जी गुरु जी को हरा के इसलिए ऐसा नहीं था कि हमने इसकी कैंडिडेट नहीं दिया देयर समथिंग कॉल्ड स्ट्रैटेजी इन पॉलिटिक्स इट वाज अ वेरी स्ट्रैटेजिकल मूव परिमल नाथ वानी को सिर्फ मैं नहीं जानता हूँ राहुल गांधी जी भी जानते हैं हेमंत सोरेन भी जानते हैं हेमंत सोरेन के विधायकों ने भी उनके लिए वोट किया नहीं तो 30 वोट क्यों देते अगर 56 वोट हैं 28 आने चाहिए तो हेमंत सोरेन के पार्टी को 30 वोट कहाँ से आ गए ये पहले से प्लान नहीं किया हुआ था उन्होंने मैंने तो आज बधाई हेमंत सोरेन को भी दी है कि बधाई हो आपके कारण दोनों कैंडिडेट राज्यसभा जीते हैं
3: You know, by all means, the BJP should have put up its own candidate. उन्होंने किसी और इंडिपेंडेंट को अपना सपोर्ट दे दिया बट कांग्रेस ने क्यों उनको सपोर्ट दे दिया कांग्रेस के 6 एमएलए ने क्यों सपोर्ट दिया संजय झा ओके ओनली 10 सेकंड्स एंड आई वांट टू ब्रिंग इन प्रोफेसर साहब एंड संजय झा अगेन यस 10 सेकंड्स
0: आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट आशुतोष
2: बुरा ना माने ये
0: आशुतोष क्योंकि वो प्रणव झा की तरह बलि के बकरा नहीं बने
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका मजाक उड़ाते हैं कि कैमरे पर पैसा लेते हुए
0: प्रणव झा की जगह आपको बलि का बकरा नहीं बनाया बधाई हो
2: ये नहीं बीजेपी है मैंने कहा ना जिसके जिसको कैमरे पर पैसे लेते हुए पकड़ा जाता प्रधानमंत्री जिसका मजाक उड़ाते हैं वो उनका डार्लिंग हो जाता है ये भारतीय जनता पार्टी की नई पॉलिटिक्स है
3: नवल किशोर यादव लुकिंग वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ ओवर देयर सर यू स्टिल हैवंट आंसर्ड द क्वेश्चन वाज इट योर एमएलएस हु वोटेड अगेंस्ट द कांग्रेस कैंडिडेट And that is the problem. You know, Tejasvi Yadav goes and wishes Rahul Gandhi today, says, I wish you health and happiness and success. And then all of you keep backstabbing. You had your local leaders who were saying that the Congress doesn't have control over its own MLAs. And bahut sare log to ye keh rahe hain ki jo Congress gayab ho gayi thi Bihar ke andar, uska badla aap logon ne liya hai. Aap meetha meetha to unke muh pe rehte hain aur bagal mein churi rakhte hain.
4: नहीं पद्मजा जी हम लोग साफ बोलते हैं और हम लोग कभी छुपा कर और पीछे बैकस्टेप नहीं करते हैं जैसा कि अजय आलोक जी की पार्टी करती रही है उनकी पार्टी तो ऐसी है कि जो उनके साथ रहता है उसी को समाप्त कर देता है याद कीजिए शिवसेना से लेकर बीजेडी से लेकर वाईएसआर से लेकर अभी जदयू लेटेस्ट है जिस पार्टी में पहले अजय आलोक जी थे तो 6 महीना में 4 उप मुख्यमंत्री या 2 मुख्यमंत्री बन जाता है वो लोग धोखा की बात करते हैं हम लोग कभी अपने पार्टनर को आज तक धोखा नहीं दिए हैं और यही बात हमारी पार्टी कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया अब कैसे कहा जाए कि हमने धोखा नहीं दिया है हम लोग धोखेबाज तो है नहीं और जो लोग धोखा दे रहे हैं उस देश को नेतृत्व कर रहे हैं देश का नेतृत्व कर रहे हैं यही आज का सबसे बड़ा विमर्श का विषय है कि जो अपने पार्टनर को धोखा देते हैं अकाली दल से लेकर कौन नहीं है उदाहरण पूरे देश में इतने उदाहरण है राजनीतिक दल छोड़ दीजिए व्यक्ति, व्यक्ति विशेष छोड़ दीजिए, कितने राजनीतिक दल को धोखा देकर समाप्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी है, ये ऑन रिकॉर्ड है।
3: ठीक है।

0: कांग्रेस की लीडरशिप के लिए, राहुल गांधी की लीडरशिप के लिए? क्योंकि जो युबाटा के जो एमपीज गए हैं उन्होंने तो कहा है कि इसी वजह से जा रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस के साथ विलय नहीं करना चाहते थे, दे डोंट वांट टू डू बिजनेस विद कांग्रेस एनीमोर।
1: देखिए मुझे लगता है कि अब क्षेत्रीय दल के पास कोई विकल्प नहीं बचा। जिस तरीके से ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है, तेजस्वी यादव चुनाव हार जाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी हार जाती है, बीएमसी चुनाव हार गए, विधानसभा आप चुनाव हार गए, तमाम राज्यों के अंदर हार गए चुनाव, अब इनके पास विकल्प नहीं। अगर ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव जीत जाती तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी ये कहती है कि अब मैं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी करूंगी क्योंकि मैं सबसे बड़ी लीडर हूं। अब सबकी मजबूरी, सबकी पार्टियां टूट रही है, कांग्रेस ही अकेली एक राष्ट्रीय पार्टी बची हुई है जिसकी चार राज्यों में सरकार है, तो मुझे लगता है सबकी मजबूरी है। और राहुल गांधी भी मुझे लगता है ये बात पसंद कर रहे होंगे कि अच्छा हुआ ममता बनर्जी हार गई, अच्छा हुआ बिहार में तेजस्वी हारे। अब राहुल गांधी ये कह सकती है कि भाई क्षेत्रीय पार्टी के से मत रही है।
0: आप नवल किशोर जी के जख्मों पर नमक की छिड़क रहे हैं कि राहुल गांधी खुश होंगे, वो सपोर्ट कर रहे हैं, आप फूट डाल रहे हैं।
1: राहुल गांधी तो आज ही अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक बुलाई थी, अब ये पूरे मुसलमानों को कि सारे मुसलमान कांग्रेस को अपने राहुल गांधी को नेता माने, कांग्रेस को अपनी पार्टी माने, राहुल गांधी को नेता माने, और सारे मुस्लिम वोट की जो राजनीति है चाहे वो आरजेडी के पास बिहार में, चाहे बंगाल में ममता बनर्जी के पास है, चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार के पास है, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पास है, सब मुसलमानों को संदेश है कि राहुल गांधी को नेता मानो और कांग्रेस के लिए वोटिंग कीजिए। मुझे लगता है क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी चुनौती,
0: ठीक है 10 सेकंड आ रही है आपके पास, ये तो आप जानबूझ के जो है उनके बीच में ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नवल किशोर जी सपोर्ट दे रहे हैं राहुल गांधी को, आप उल्टा कह रहे हैं कि सारे मुसलमानों को खींच रहे हैं राहुल गांधी नवल किशोर जी की पार्टी से।
2: देखिए ये समीर जी के डीएनए में है इस तरह का बात करना, 15 लाख वोट जो बिहार में आरजेडी को मिला है क्या वो सभी मुसलमान है? इस तरह आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस तरह का कम से कम बात आपको ऑनलाइन नहीं करना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी है वो खुलेआम सांप्रदायिक पार्टी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश में लोग जानते हैं, पूरी तरह से सांप्रदायिक पार्टी है, उसके इतिहास में है, उसके डीएनए में है। लगातार आप देखिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, भरत तिवारी को मार दिया गया, जो भरत तिवारी एनकाउंटर किया गया उसने सरेंडर किया, उसके बाद भी मुख्यमंत्री खुलेआम करता है। अरे गमछा देखकर अपराधियों को पकड़ो, जो टाइटल देखकर अपराधियों को पकड़ो, इस तरह का खुलेआम जाति और धर्म की बात करता है वो इनका प्रस्ताव है। आप बताइए किस तरह का राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी? हमारा राजनीति स्पष्ट है, जो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसको हम बचाएंगे, जो सेकुलरिज्म है उसको हम बचाएंगे, जो संवैधानिक मूल्य है उसको हम बचाएंगे, उसके हमारे लिए वोट महत्वपूर्ण नहीं है, मत महत्वपूर्ण है, पब्लिक ओपिनियन।
0: ठीक है, तो सारी सेक्युलर पार्टीज अभी भी साथ में ही हैं अजय आलोक, डिस्पाइट ऑल योर अटेम्प्ट्स ऑल द सेक्युलर पार्टीज इवेंचुअली विल कम अंडर द कांग्रेस एंड राहुल गांधी अम्ब्रेला।
3: Well, first I would like to say, Naval Kishore bhai very categorically said that ideologically we are very near to Congress. हम उनके साथ हैं अपने विचारधारा में. What an irony. The very first child of Mr. Lalu Prasad Yadav was Meesa Bharati. Meesa, the famous draconian law of emergency, जिसके विरोध, जिसके तहत लालू जी जेल में गए थे, इसलिए अपनी बेटी का नाम मीसा में रख दिया, और उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ideologically ये लोग कांग्रेस के साथ हैं. This is the irony of politics. हमारे विरोध में लड़ना है तो कहीं ना कहीं पकड़ना है, तो पकड़ते रहिए उसको, आप सेक्युलर कहिए उसको, आप नमाजवादी कहिए उसको, मुस्लिम प्रेम कहिए उसको, मुस्लिम प्रेम कहिए उसके लिए आप SIR का विरोध कीजिए, उसके लिए आप इलेक्शन कमीशन को गाली दीजिए, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट को गाली दीजिए, CBI को गाली दीजिए, IT को गाली दीजिए, अंत में देश को गाली दीजिए। दिस इज सेक्युलरिज्म, व्हाट अ सेक्युलरिज्म, एंड दैट्स व्हाई पीपल हैव अगेन एंड अगेन रिजेक्टेड देम इन ईच एंड एवरी स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल। Or why we should be afraid when they were not together? When they were not together, you know, they are like crabs. You have seen crabs? One crab climbs up, another crab pulls him down. They are like crabs. So we are not concerned. We are not concerned of crab, and country is also not concerned of crab. The secular crabs, they can keep on contesting between each other. They have nothing to do with the country. They have nothing to do with the welfare of the country.
2: आपको कुछ आपकी भाषा ही बता रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नए प्रोडक्ट हो। जब से नागपुर गए हैं आपको सेकुलरिज्म का परिभाषा भी नहीं समझ में आता है। जब जदयू के
3: केकड़ा कह दिया, आप क्रैब सुनने में आपको खराब लग रहा है, केकड़ा कह दिया, एक दूसरे को खींचते रहते हो, नहीं तो क्यों झारखंड हार जाते, क्यों मध्य प्रदेश हार जाते?
2: आप बताइए ना, आप अपनी बता, आप बताइए कि आपकी जो पार्टी है वो क्या थी,
3: बताइए ना। संजय यादव तो बोल ही रहा है आज कि हां मैंने हरवा दिया। संजय यादव आप ही के मंत्री है ना, खुलेआम बोल रहे झारखंड में मैंने हरवाया कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने मेरे बेटे को हराया था
2: आपने तो
3: भागलपुर में,
2: आपने
3: लालू जी ने खुद बात

0: दोनों पक्ष को सुने, क्योंकि आप अगर संविधान के हिसाब से जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो साफ इनके खिलाफ जाता है। क्योंकि आइदर आप कह रहे हैं कि भाई मैं दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में 2/3 बन के रहूंगा, मैं दूसरा पार्टी का मेंबरशिप बन के उस पार्टी में रहूंगा तभी आपका मेंबरशिप चला जाएगा। ये साफ मेंशन किया है संविधान में, या तो संविधान गलत है या फिर आप गलत है, दोनों में कोई एक गलत तो होगा।
1: Breaking news coming in now from down south, where Karnataka government is mulling on rejigging the guarantees that were promised during the election of Karnataka. The Congress party and the DKS Sarkara is moving towards tightening the verification process for new beneficiaries and introducing new checks for the beneficiaries who will be getting the Karnataka Congress Sarkara's guarantees. Now, this is being done after DKS has taken charge as the new chief minister. The tracking and account scrutiny is likely to become central to implementation of welfare programs. My colleague Deepak Bopanna is with me for more. Deepak, tell us why this sudden change?
2: Well, Aditi, as far as the guarantees are concerned, as far as the BJP is concerned, they've always, maintained that the guarantees have been a burden on the exchequer. They've always also maintained that the, Congress government has been looking to reduce, the guarantees which have been implemented. Now, after the new chief minister, Mr. D.K. Shivakumar, has taken over, there has been once again a rethink on the guarantees in terms of who are the beneficiaries. Here, the new chief minister believes, or rather the data that has been given to him has suggested there are many beneficiaries, especially when it comes to the Gruha Lakshmi scheme, that many of them who are not actually eligible for the scheme have been benefited from it. For example, people who have deceased are also, the funds have been transferred to their account. Now, the government is saying that they're going to review, especially the Gruha Lakshmi and the Gruha Jyoti, in terms of who are the beneficiaries, and then take action based on that. Now, this is going to happen in the weeks to come. But the BJP has already alleged foul play, and they're saying that this is for the Congress government to trim the guarantees and right, also to reduce the amount of funding that will be going out to the state.
1: Absolutely. This will pave the way for more political war of words in the state, with BJP upping the ante against Congress. Thank you so much, Deepak, for those details. Shifting our focus now, a birthday celebration for Congress MP Rahul Gandhi snowballed into a political controversy. In Varanasi, youth Congress workers performed a Durgabhishek on a poster depicting Rahul Gandhi in a Lord Parshuram-like avatar, holding an axe in one hand and the constitution on the other. The BJP hit back sharply, calling the comparison an insult to Bhagwan Parshuram and accusing Congress of practicing election time Hindutva. Sample the reactions.
3: दिख रहा है तस्वीर में कि राहुल गांधी को परशुराम अवतार में दिखाया गया है और फूल और दूध चढ़ाकर उनका जन्मदिन मनाया है पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की तुलना परशुराम भगवान से की गई है, ये अपमान है, परशुराम भगवान का सनातन का अपमान है। क्या आपका जवाब?
4: देखिए, जो भी लोग वहाँ पर थे वो स्वयं सब ब्राह्मण लोग थे, जिन लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था उनकी भावनाएँ थी, वो स्वयं परशुराम के वंशज अपने आप को मानते हैं। मुझे नहीं लगता कहीं पर भी उसमें कोई चीज़ गलत है, उनकी भावनाएँ हैं। अब बात आती है दूसरा विषय सनातन वाला, बीजेपी भी सनातन की बात करेगी? अरे प्रभु राम का चंदा चोरी करके खा गए तुम लोग, गाय को काटने की परमिशन देते हो, शंकराचार्य की पालकी उठा के फेंक देते हो, शंकराचार्य के ऊपर पॉक्सो जैसा केस लगवाते हो अपने प्रशासन से, तुम लोग भी बात करोगे? भाजपा ने जितना सनातन का नुकसान किया है आज तक किसी ने नहीं किया, और नया नया तो जो प्रकरण है, अभी तक तो चंदा चोर थे, अब तो चढ़ावा चोर हो गए। अरे चढ़ावा और प्रभु राम के हीरे जवाहरात के सब आभूषण खा गए आरएसएस और भाजपा वाले, ये भी सनातन की बात करेंगे? भाजपाइयों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रभु राम के आभूषण चोरी करने की? भाजपाइयों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाय को काटने की परमिशन देने की? तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी।
5: मैं जन्मदिन का बधाई देता हूँ, लेकिन भगवान परशुराम को गाली नहीं दे सकता मैं। भगवान परशुराम की तुलना उस आदमी से दिया जाए जिनका अभी

0: तक देश जानता नहीं वो किस धर्म को मानते हैं और क्या करते हैं, किसने दर्शाया मैं नहीं जानता।
1: कांग्रेस सपोर्टर्स कैन ड्रीम ऑफ मेकिंग राहुल गांधी द प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज बर्थडे, बट द ट्रूथ इज जस्ट 24 आवर्स बैक देयर ओन अलायंस पार्टनर जेएमएम एक्सपोज्ड द कांग्रेस पार्टी वेयर द अलायंस पार्टनर्स ऑफ द कांग्रेस डिड नॉट वोट फॉर द कांग्रेस राज्यसभा कैंडिडेट इन झारखंड। The 2029 elections, the Hindus of India, the Sanatanis of India, the people of India have made up their mind to support Prime Minister Narendra Modi. They've also seen how on Rahul Gandhi's birthday, the Congress supporters have at one point ensured that they have insulted Bhagwan Parshuram. At the same time, they've said that 365 days, out of 365 days, one day the Congress party will remember Hindus, 364 days they'll do appeasement politics.
2: भगवान परशुराम की बराबरी करना राहुल गांधी जी को काफी महंगा पड़ेगा, ये हो ही नहीं सकता। जो सनातन विरोधी है, जो वो कैसे भगवान परशुराम की बराबरी के बारे में सोच भी सकता है। राहुल गांधी जी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके वंशजों ने ही गोपाष्टमी के दिन गौरक्षकों पर, संतों पर लाठियां और गोलियां चलवा करके नई दिल्ली को, संसद भवन के आसपास को खून से रंगने का काम किया था।
3: जिस किस्म से उसने विपक्षी नेतृत्व किए हैं, जिस किस्म से उन्होंने इतना सख्त रहा, रेजोल्यूट, रेजिलियंट, इसी किस्म से आगे बढ़ाना है। अब देखो, 10 साल के बाद हमें केरला में एक जीत हुई, अगले साल अगर कुछ सालों के बाद पंजाब में जीत हुई, अगर उत्तराखंड में, अगर तो बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं हमारे विपक्ष की किस्मत में। अब मेरे ख्याल में उनका जो डिटर्मिनेशन है, उनका जो कन्विक्शन है, ये सब लग के आगे जाना है हमारे पार्टी को। इसलिए कांग्रेस के हर अंग आए हैं, बहुत दूर से भी आए हैं, उनको बिल्कुल उनको विश करने के लिए, समर्थन देने।
4: पूरे देश में खासकर युवा आज उनको देखते हैं एक ऐसे इंसान की तरह जो उनकी उम्मीदों को बढ़ाना चाहता है। जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, एग्जामिनेशन प्रणाली है, उस पर लोगों का विश्वास टूट रहा है और एक बहुत असमंजस लोगों के जहन में है। उसका मुकाबला करने के लिए, बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए, न्याय दिलाने के लिए वो काम कर रहे हैं और आज के दिन मेरी शुभकामनाएं उनको, और मुझे लगता है उनका, उनकी जो मेहनत है ये जरूर रंग लाएगी।
5: स्लिपिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग एनडीटीवी फॉर मोर न्यूज एंड अपडेट्स।

सामने खड़ा है। आज मैं भक्तों काल परवा पासोन कुछ कुत्ते रोज भोक रहे हैं, पर मैं तुम्हारा सांगतो कुत्ते झुंड में आके भोकते हैं, शेर अकेला आता है। कुत्ते भोकते रहते हैं, टाइगर शिकार करता है, और कुत्ते भोकते रहते हैं और टाइगर दहाड़ता है। ये शिवसेना है, ही शिवसेना है।

0: ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या।
1: आणि काय उद्धव ठाकरे कोणाला भेटत नाहीत? बरं उद्धवजी नाही तर आदित्य ठाकरे फिरले पाहिजेत। मम्मी जर कोणाला भेटत नव्हतं तर गदेडा तू निवडून कसा आलास? लोकसभेच्या वेळेला सुद्धा तुमच्या सगळ्यांच्या सोबत प्रत्येक लोकसभेमध्ये किमान 6 ते 10 सभा मी तेव्हा घेतल्या होत्या, 6 ते 10 तेव्हाही निवडून आलेले आहेत। पण जर का मी असं गर्वाने म्हटलं की मी तुला तिकीट दिलं, मी तुला निवडून आणलं, मी तुला मंत्री केलं, मी तुला आमदार केलं, मी तुला विधानसभेतल्या मंत्रिपदाची तिथली खुर्ची दाखवली, तर हा माझा गर्व असेल। पण मी गर्वाने नाही बोलू शकत, कारण मला माहिती आहे की उद्धव ठाकरेला किंमत नाही, उद्धव बाळासाहेब ठाकरेला किंमत आहे। आणि याचं भान मला आहे। आपण जी ज्या वेळेला सगळ्या महिलांना माहिती आहे, आता शहरामध्ये तर काही जंगलतोड बेसुमार चाललेली आहे शहरामध्ये।
2: And my colleague Saurabh Gupta is with me. Saurabh, you have been tracking this war of words. We saw earlier also when real Shiv Sena fight was on. And now again when rebels are giving a tough time to Uddhav Thackeray, he's back to his threads. But Shinde has said in a very clear wording that Operation Tiger is so on between the two factions.
3: Absolutely. The rhetoric just got louder between the two Senas. And of course, today is a day when both the Senas, the faction led by Uddhav Thackeray and the faction led by Eknath Shinde, both held separate events to celebrate what is known as the Foundation Day of the Shiv Sena. It's the 60th Foundation Day. Now, in what Uddhav Thackeray said was what his point of view has been, that these are people whom he got elected, but they've stabbed him in the back, calling them traitors for leaving the party, leaving him. Eknath Shinde, however, said that he hunts alone, he's the tiger. The tiger is relevant because the tiger is also associated with the Shiv Sena. And using the very filmy line, said that picture abhi baki hai, which means that there could be more defections and more people who could be actually looking at more defections in the next few days. And that includes the BMC, the all-important BMC, where I spoke today to the group leader of the Shiv Sena, Amay Ghole, who said that corporators also may be rebelling. So we haven't seen the end of this yet. The rhetoric is only going to get higher. Uddhav Thackeray calling those defectors traitors, calling them gaddar, and Eknath Shinde saying there's more to come.
2: Absolutely. The war of words is only getting interesting with filmy dialogues and more to see whether more defection will take place. Thank you so much, Saurabh, for joining us. Shifting our focus now to TMC, where the action shifted to New Delhi. A high-level delegation from the Trinamool Congress, led by Party General Secretary Abhishek Banerjee, met with Lok Sabha Speaker Om Birla to formally demand the disqualification of 20 MPs from TMC in a major political confrontation. Now, the TMC delegation submitted 20 different petitions aimed at parliamentarians who had recently defected to the Nationalist Citizens Party of India. The party is advocating for swift constitutional action against rebels for changing political allegiance. Meanwhile, as per sources, Lok Sabha Speaker Om Birla will take final call on plea of rebels who are seeking merger with NCPI and a separate seating arrangement inside the parliament before the monsoon session. But listen into what Abhishek Banerjee had to say after his meeting with Om Birla.
4: अध्यक्ष जी को हमने ये अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इस पे आप कार्रवाई करें, दोनों पक्ष को सुने, क्योंकि आप अगर संविधान के हिसाब से जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो साफ इनके खिलाफ जाता है। क्योंकि आइदर आप कह रहे हैं कि भाई मैं दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में 2/3 बन के रहूंगा, मैं दूसरा पार्टी का मेंबरशिप बन के उस पार्टी में रहूंगा, तभी आपका मेंबरशिप चला जाएगा। ये साफ मेंशन किया है संविधान में, या तो संविधान गलत है या फिर आप गलत है, दोनों में कोई एक गलत तो होगा।
2: Breaking news coming in now from down south, where Karnataka government is mulling on rejigging the guarantees that were promised during the election of Karnataka. The Congress party and the DKS Sarkara is moving towards tightening the verification process for new beneficiaries and introducing new checks for the beneficiaries who will be getting the Karnataka Congress Sarkara's guarantees. Now, this is being done after DKS has taken charge as the new chief minister. The tracking and account scrutiny is likely to become central to implementation of welfare programs. My colleague Deepak Bopanna is with me for more. Deepak, tell us why this sudden change?
5: Well, Aditi, as far as the guarantees are concerned, as far as the BJP is concerned, they've always, maintained that the guarantees have been a burden on the exchequer. They've always also maintained that the, Congress government has been looking to reduce, the guarantees which have been implemented. Now, after the new chief minister, Mr. D.K. Shivakumar, has taken over, there has been once again a rethink on the guarantees in terms of who are the beneficiaries. Here, the new chief minister believes, or rather the data that has been given to him has suggested there are many beneficiaries, especially when it comes to the Gruha Lakshmi scheme, that, many of them who are not actually eligible for the scheme have been, benefited from it. For example, people who have, who've been deceased are also, the funds have been transferred to their account. Now, the government is saying that they're going to review, especially the Gruha Lakshmi and the Gruha Jyoti, in terms of who are the beneficiaries, and then take action based on that. Now, this is going to happen in the weeks to come. But the BJP has already alleged foul play, and they're saying that this is for the Congress government to trim the guarantees and right. also to reduce the amount of funding that will be going out to the state.
2: Absolutely. This will pave the way for more political war of words in the state, with BJP upping the ante against Congress. Thank you so much, Deepak, for those details. Shifting our focus now, a birthday celebration for Congress MP Rahul Gandhi snowballed into a political controversy. In Varanasi, youth Congress workers performed a Durga Abhishek on a poster depicting Rahul Gandhi in a Lord Parshuram-like avatar, holding an axe in one hand and the constitution on the other. The BJP hit back sharply, calling the comparison an insult to Bhagwan Parshuram and accusing Congress of practicing election time Hindutva. Sample the reactions.
6: दिख रहा है तस्वीर में कि राहुल गांधी को परशुराम अवतार में दिखाया गया है और फूल और दूध चढ़ाकर उनका जन्मदिन मनाया है पार्टी के कार्यकर्ताओं ने. बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की तुलना परशुराम भगवान से की गई है, ये अपमान है, परशुराम भगवान का सनातन का अपमान है. क्या आपका जवाब?
7: देखिए, जो भी लोग वहाँ पर थे वो स्वयं सब ब्राह्मण लोग थे. जिन लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था उनकी भावनाएँ थी, वो स्वयं परशुराम के वंशज अपने आप को मानते हैं. मुझे नहीं लगता कहीं पर भी उसमें कोई चीज़ गलत है, उनकी भावनाएँ हैं. अब बात आती है दूसरा विषय सनातन वाला. बीजेपी भी सनातन की बात करेगी? अरे, प्रभु राम का चंदा चोरी करके खा गए तुम लोग, गाय को काटने की परमिशन देते हो, शंकराचार्य की पालकी उठा के फेंक देते हो, शंकराचार्य के ऊपर पॉक्सो जैसा केस लगवाते हो अपने प्रशासन से, तुम लोग भी बात करोगे? भाजपा ने जितना सनातन का नुकसान किया है आज तक किसी ने नहीं किया. और नया नया तो जो प्रकरण है, अभी तक तो चंदा चोर थे, अब तो चढ़ावा चोर हो गए. अरे, चढ़ावा और प्रभु राम के हीरे जवाहरात के सब आभूषण खा गए आरएसएस और भाजपा वाले, ये भी सनातन की बात करेंगे? भाजपाइयों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रभु राम के आभूषण चोरी करने की? भाजपाइयों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाय को काटने की परमिशन देने की? तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी.
8: मैं जन्मदिन का बधाई देता हूँ, लेकिन भगवान परशुराम को गाली नहीं दे सकता. मैं भगवान परशुराम की तुलना उस आदमी से दिया जाए जिनका अभी तक देश जानता नहीं वो किस धर्म को मानते हैं और क्या करते हैं, किसने दर्शाया मैं नहीं जानता.
9: Congress supporters can dream of making Rahul Gandhi the Prime Minister on his birthday, but the truth is, just 24 hours back, their own alliance partner JMM exposed the Congress party, where the alliance partners of the Congress did not vote for the Congress Rajya Sabha candidate in Jharkhand. The 2029 elections, the Hindus of India, the Sanatanis of India, the people of India have made up their mind to support Prime Minister Narendra Modi. They've also seen how on Rahul Gandhi's birthday, the Congress supporters have at one point ensured that they have insulted भगवान परशुराम एट द सेम टाइम दे हैव सेड दैट 365 डेज आउट ऑफ 365 डेज वन डे द कांग्रेस पार्टी विल रिमेंबर हिंदूज 364 डेज दे विल डू अपीजमेंट पॉलिटिक्स.
10: भगवान परशुराम की बराबरी करना राहुल गांधी जी को काफी महंगा पड़ेगा. ये हो ही नहीं सकता. जो सनातन विरोधी है जो वो कैसे भगवान परशुराम की बराबरी के बारे में सोच भी सकता है. राहुल गांधी जी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके वंशजों ने ही गोपाष्टमी के दिन गौरक्षकों पर संतों पर लाठियां और गोलियां चलवा करके नई दिल्ली को संसद भवन के आसपास को खून से रंगने का काम किया था.
11: जिस किस्म से उसने विपक्षी नेतृत्व किए हैं, जिस किस्म से उन्होंने इतना सख्त रहा, रेजोल्यूट रेजिलियंट, इसी किस्म से आगे बढ़ाना है. अब देखो 10 साल के बाद हमें केरला में एक जीत हुई, अगले साल अगर कुछ सालों के बाद पंजाब में जीत हुई, अगर उत्तराखंड में, अगर तो बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं हमारे विपक्ष की किस्मत में. अब मेरे ख्याल में उनका जो डिटर्मिनेशन है, उनका जो कन्विक्शन है, ये सब लग के आगे जाना है हमारे पार्टी को. इसलिए कांग्रेस के हर अंग आए हैं, बहुत दूर से भी आए हैं, उनको बिल्कुल उनको विश करने के लिए समर्थन देने.
12: पूरे देश में खासकर युवा आज उनको देखते हैं एक ऐसे इंसान की तरह जो उनकी उम्मीदों को बढ़ाना चाहता है. जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, एग्जामिनेशन प्रणाली है, उस पर लोगों का विश्वास टूट रहा है और एक बहुत असमंजस लोगों के जहन में है. उसका मुकाबला करने के लिए, बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए, न्याय दिलाने के लिए वो काम कर रहे हैं. और आज के दिन मेरी शुभकामनाएं उनको, और मुझे लगता है उनका उनकी जो मेहनत है ये जरूर रंग लाएगी.
2: स्लिपिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग एनडीटीवी फॉर मोर न्यूज एंड अपडेट्स.

0: सामने खड़ा है। आज मी बघतोय काल परवापासून कुछ कुत्ते रोज भोकरे हैं, पण मी तुम्हाला सांगतो कुत्ते झुंड में आके भोकते हैं, शेर अकेला आता है, कुत्ते भोकते रहते हैं, टाइगर शिकार करता है, और कुत्ते भोकते रहते हैं और टाइगर दहाड़ता है। ये शिवसेना है, ही शिवसेना है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या।
1: अनिकाय

0: new chief minister, Mr. D.K. Shukumar, has taken over, there has been once again a rethink on the guarantees in terms of who are the beneficiaries. Here, the new chief minister believes, or rather the data that has been given to him has suggested there are many beneficiaries, especially when it comes to the Gruha Lakshmi scheme, that many of them who are not actually eligible for the scheme have been benefited from it. For example, people who have who've been deceased are also, the funds have been transferred to their account. Now the government is saying that they're going to review, especially the Gruha Lakshmi and the Gruha Jyoti, in terms of who are the beneficiaries, and then take action based on that. Now this is going to happen in the weeks to come. But the BJP has already alleged foul play, and they're saying that this is for the Congress government to trim the guarantees also to reduce the amount of funding that will be going out to the state.
1: Absolutely. This will pave the way for more political war of words in the state, with BJP upping the ante against Congress. Thank you so much, Deepak, for those details. Shifting our focus now, a birthday celebration for Congress MP Rahul Gandhi snowballed into a political controversy. In Varanasi, youth Congress workers performed a Durgabhishek on a poster depicting Rahul Gandhi in a Lord Parshuram-like avatar, holding an axe in one hand and the constitution on the other. The BJP hit back sharply, calling the comparison an insult to Bhagwan Parshuram and accusing Congress of practicing election time Hindutva. Sample the reactions.
2: दिख रहा है तस्वीर में कि राहुल गांधी को परशुराम अवतार में दिखाया गया है और फूल और दूध चढ़ाकर उनका जन्मदिन मनाया है पार्टी के कार्यकर्ताओं ने. बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की तुलना परशुराम भगवान से की गई है, यह अपमान है, परशुराम भगवान का सनातन का अपमान है. क्या आपका जवाब?
3: देखिए, जो भी लोग वहाँ पर थे वो स्वयं सब ब्राह्मण लोग थे. जिन लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था उनकी भावनाएँ थी, वो स्वयं परशुराम के वंशज अपने आप को मानते हैं. मुझे नहीं लगता कहीं पर भी उसमें कोई चीज़ गलत है, उनकी भावनाएँ हैं. अब बात आती है दूसरा विषय सनातन वाला. बीजेपी भी सनातन की बात करेगी? अरे प्रभु राम का चंदा चोरी करके खा गए तुम लोग, गाय को काटने की परमिशन देते हो, शंकराचार्य की पालकी उठा के फेंक देते हो, शंकराचार्य के ऊपर पॉक्सो जैसा केस लगवाते हो अपने प्रशासन से, तुम लोग भी बात करोगे? भाजपा ने जितना सनातन का नुकसान किया है आज तक किसी ने नहीं किया है. और नया नया तो जो प्रकरण है, अभी तक तो चंदा चोर थे, अब तो चढ़ावा चोर हो गए. अरे चढ़ावा और प्रभु राम के हीरे जवाहरात के सब आभूषण खा गए आरएसएस और भाजपा वाले, ये भी सनातन की बात करेंगे? भाजपाइयों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रभु राम के आभूषण चोरी करने की? भाजपाइयों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाय को काटने की परमिशन देने की? तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी.
4: मैं जन्मदिन का बधाई देता हूँ, लेकिन भगवान परशुराम को गाली नहीं दे सकता. मैं भगवान परशुराम की तुलना उस आदमी से दिया जाए जिनका अभी तक देश जानता नहीं वो किस धर्म को मानते हैं और क्या करते हैं, किसने दर्शाया मैं नहीं जानता.
5: Congress supporters can dream of making Rahul Gandhi the Prime Minister on his birthday, but the truth is just 24 hours back, their own alliance partner JMM exposed the Congress party, where the alliance partners of the Congress did not vote for the Congress Rajya Sabha candidate in Jharkhand. The 2029 elections, the Hindus of India, the Sanatanis of India, the people of India have made up their mind to support Prime Minister Narendra Modi. They've also seen how on Rahul Gandhi's birthday, the Congress supporters have at one point ensured that they have insulted Bhagwan Parshuram. At the same time, they've said that 365 days, out of 365 days, one day the Congress party will remember Hindus, 364 days they'll do appeasement politics.
6: Bhagwan Parshuram ki barabari karna Rahul Gandhi ji ko kafi mehenga padega. ये हो ही नहीं सकता. जो सनातन विरोधी है, जो वो कैसे भगवान परशुराम की बराबरी के बारे में सोच भी सकता है? राहुल गांधी जी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके वंशजों ने ही गोपाष्टमी के दिन गौरक्षकों पर, संतों पर लाठियां और गोलियां चलवा करके नई दिल्ली को, संसद भवन के आसपास को खून से रंगने का काम किया था.
7: जिस किस्म से उसने विपक्षी नेतृत्व किए हैं, जिस

0: किस्म से उन्होंने इतना शक्त रहा, रेजोल्यूट, रेजिलियंट, इसी किस्म से आगे बढ़ाना है। अब देखो 10 साल के बाद हमें केरला में एक जीत हुई, अगले साल अगर कुछ सालों के बाद पंजाब में जीत हुई, अगर उत्तराखंड में, अगर तो बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं हमारे विपक्ष की किस्मत में। अब मेरे ख्याल में उनका जो डिटर्मिनेशन है, उनका जो कन्विक्शन है, ये सब लग के आगे जाना है हमारे पार्टी को। इसलिए कांग्रेस के हर रंग आए हैं, बहुत दूर से भी आए हैं, उनको बिल्कुल उनको विश करने के लिए समर्थन देने।
1: पूरे देश में खासकर युवा आज उनको देखते हैं एक ऐसे इंसान की तरह जो उनकी उम्मीदों को बढ़ाना चाहता है। जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, एग्जामिनेशन प्रणाली है, उस पर लोगों का विश्वास टूट रहा है और एक बहुत असमंजस लोगों के जहन में है। उसका मुकाबला करने के लिए, बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए, न्याय दिलाने के लिए वो काम कर रहे हैं और आज के दिन मेरी शुभकामनाएँ उनको, और मुझे लगता है उनका उनकी जो मेहनत है ये ज़रूर रंग लाएगी।
2: Slipping into a very short break, don't go anywhere, keep watching NDTV for more news and updates.

0: डिटर्मिनेशन है, उनका जो कन्विक्शन है, ये सब लग के आगे जाना है हमारे पार्टी को। इसलिए कांग्रेस के हर रंग आए हैं, बहुत दूर से भी आए हैं, उनको बिल्कुल उनको विश करने के लिए समर्थन देने।
1: पूरे देश में खासकर युवा आज उनको देखते हैं एक ऐसे इंसान की तरह जो उनकी उम्मीदों को बढ़ाना चाहता है। जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, एग्जामिनेशन प्रणाली है, उस पर लोगों का विश्वास टूट रहा है और एक बहुत असमंजस लोगों के जहन में है। उसका मुकाबला करने के लिए, बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए, न्याय दिलाने के लिए वो काम कर रहे हैं और आज के दिन मेरी शुभकामनाएं उनको, और मुझे लगता है उनका उनकी जो मेहनत है ये जरूर रंग लाएगी।
2: Slipping into a very short break, don't go anywhere, keep watching NDTV for more news and updates.